0: Visit psychicramnath.com. Call 469-347-4401. Plano, McKinney, Irving or Garland mein uplabdh.
1: Chicken banana. Chicken banana?
2: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
3: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
4: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
5: Main expert lifeline use karna chahunga.
4: Computer ji, SBA loan experts se connect kiya jaye.
3: SBA Loan Experts ne business loan process bahut hi aasan bana diya hai. No tax returns needed to apply aur credit par hard check bhi nahi. Results sirf 10 minute mein.
0: Business loan options ko clarity se samajhne ke liye call kare 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. Faisla clarity ke saath.
6: Sab kuch saaf rakh sakte ho.
7: Par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. Koi nahi sochta mere bare mein.
8: Kyunki ye kaun bola?
7: Ye hum bol rahe hain aapke ghar ka duct. जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
3: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
13: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
12: K2 ड्राइव मतलब?
13: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
12: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
13: 100%
14: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
15: घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी?
16: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
3: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
16: सच में बिल्कुल घर जैसा।
3: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
17: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू आर ट्यून्ड इनटू फन एशिया रेडियो।

What a brilliant show. Thank you so much, Parul. और बहुत अच्छा लगता है पारुल से मिलके when we change shift. And with that, आप लोगों के गाने चलेंगे. आप लोगों की रिक्वेस्ट सर आंखों पर 972355555 if you have a song in mind. और अगर रिक्वेस्ट आपने कल करी है तो वो भी आज चलेगी, क्योंकि अगली रिक्वेस्ट मैं चलाना चाहती हूँ अनिका की. अनिका बड़ी प्यारी सी बच्ची है, गौरव हमारे लिसनर हैं, उनकी बेटी है, और उन्होंने कहा कि आपने मेरी बड़ी बेटी का गाना चलाया, कल की बात है. एंड व्हेन आई वाज फिनिशिंग द शो ही सेड कि अनिका भी अनिका को एक गाना बहुत पसंद है भूत बंगला का, एंड कैन यू प्ले दैट सॉन्ग. लेकिन शो खत्म हो गया था तो मैंने गौरव साहब से प्रॉमिस किया था, अनिका से प्रॉमिस किया था दैट आई विल स्टार्ट द शो विद दैट सॉन्ग. सो हियर दिस गोज फॉर द लिटिल अनिका.

थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस 104.9 FM. कॉल कर सकते हैं आप 972-355-5555 पर एंड वी विल बी प्लेइंग योर सॉन्ग्स. गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुडेज डे इन अ लिटिल बिट.

थैंक यू सो मच हसन साहब फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग. ये हसन साहब की रिक्वेस्ट थी. थोड़ा सा ओरिजिनल पुराना गाना है तो हम बहुत पुराने गाने नहीं चलाते क्योंकि शाम का वक्त है. इट इज द मिडल ऑफ द वीक वेंसडे इवनिंग. पीपल आर लौटिंग बैक. देखिए ऐसा हिंदी में इंग्लिश मिक्स हो जाता है कि कमिंग बैक को आई एम सेइंग लौट रहे हैं लोग. कमिंग बैक को मैं कह रही हूँ लौटिंग बैक. बट यस लॉट ऑफ पीपल आर रिटर्निंग बैक सो वी वॉन्ट फ्रॉम वर्क सो वी वॉन्ट देम टू पर्क अप एंड बी रेडी फॉर अ ग्रेट इवनिंग. तो अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं अगर पुराना होगा तो आई विल ट्राई टू प्ले अ रीमिक्स. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग भी थोड़ा सा 90s का है. एंड 90s सॉन्ग्स आर एब्सोल्युटली फाइन. 972-35-5555 पारो इन द हाउस.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: दोस्तों यारों मैं हूँ पारो, आप ही के गाने चला रही हूँ। एंड इट इज अ ब्यूटिफुल डे टुडे। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, आई थिंक कुछ लोगों को शायद ज्यादा गर्मी लगेगी। मेरे लिए इट्स परफेक्ट, आई लाइक दिस, दिस इज परफेक्ट गर्मी फॉर मी। इससे ज्यादा होगी जब जरूर होगी, बिकॉज वी आर इन डैलस आफ्टर ऑल। तो बहुत ज्यादा मुझे तब ऑब्वियसली हर किसी को बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना। इट्स ऑल्सो बिकम अ सेफ्टी इशू। कार में आप मेक श्योर करें कि बच्चे कार में ना हो, लॉक्ड कार में, स्पेशली पेट्स एंड बच्चे कार में नहीं रहें, थिंग्स लाइक दैट। सो काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है स्पेशली आफ्टरनून्स में, बट दिस वन आई थिंक इज राइट नाउ प्रीटी गुड। लॉट ऑफ पीपल, व्हेन आई वाज ड्राइविंग इज वेल, लॉट ऑफ पीपल आर आउटसाइड। इट्स अ नाइस वेदर टू बी आउटसाइड। सो आई होप यू आर एंजॉइंग योर वेंसडे इवनिंग एंड आई एम प्लेइंग द सॉन्ग्स दैट यू लाइक। 972-355-5555 है स्टूडियो का नंबर, आप कॉल कर सकते हैं। आई नो कपल ऑफ पीपल वर ट्राइंग टू कॉल एंड कनेक्ट नहीं हो रहा था, बट आई ट्राइड एंड इट इज वर्किंग। सो यू कैन कॉल एंड आई विल टेक योर कॉल्स। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि कुछ लोगों के साथ कॉल नहीं कनेक्ट हो पाया है, बट प्लीज कॉल एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट वॉट इज स्पेशल अबाउट टूडेज डे। आज का दिन कुछ खास है, आज है मैं तेरा। वैसे तो मैं हमेशा ही आप लोगों की हूँ, डैलस के जो हमारे लिसनर्स हैं, लेकिन आज सच में मैं तेरा तेरी या तेरी तो नहीं बोलते हम, तेरा बोलते हैं। वेलकम टू मे 13th इवनिंग
1: सिस्टर टाइप। थोड़ा गरम गा सकती है?
2: मैं बताऊं,

0: एक छोटे से ब्रेक में जाने वाले हैं. सना ने गाने की रिक्वेस्ट करी है एंड आई एम गोइंग टू प्ले दैट. एक मिनट ही चलेगा लेकिन बहुत प्यारा गाना है उनकी मदर के लिए. हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन सना, आपकी मदर के लिए.
1: आ जाओ

0: भेजना। आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
4: इन प्लेनो।
3: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान? अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com।
6: Babaji Biryanis in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials. Thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks. Freshly made sweets and bakery items. Please walk into Babaji Plano or visit babajiplano.com.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
11: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha hai.
10: रोज का सेम प्रॉब्लम।
12: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
13: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
14: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
1: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
15: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
16: Excuse me. It's called being loyal.
15: It's called being predictable.
16: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
17: Hi, this is Sefali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

सच इसके बाद एक्चुअली आवाज भी आती है विकी कौशल साहब की. एंड विकी कौशल इज अ वेरी रिमार्केबल एक्टर आई मस्ट से, क्योंकि बहुत ज्यादा एवोल्यूशन कह सकते हैं उनका, बहुत चेंजेस हुए हैं ओवर द इयर्स. अगर आपको मसान फिल्म याद हो उनकी, ही वॉज अ वेरी सिंपल एकदम ऐसा लड़का फ्रॉम अ स्मॉल टाउन विलेज कह सकते हैं, उस तरह का उनको दिखाया है. एंड फिल्म भी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल, थोड़े लोगों को शायद स्लो लगी हो, बट वेरी सिंपल स्टोरी. एंड विकी कौशल रियली डिड वंडरफुल इन वंडरफुली वेल इन दैट फिल्म. लेकिन अगर अभी आप उनको देखें एंड द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल दैट दैट ही हैज़ डन इज रियली रिमार्केबल. ही हैज़ कम फ्रॉम अ सिंपल ऑलमोस्ट लाइक अ थिएटर एक्टर कह सकते हैं आप, टू समबडी हु इज अ फुल फ्लेज्ड हीरो. मतलब लोग उनके कॉपी, उनके हाव भाव, उनके हेयर स्टाइल सब कुछ कॉपी करते हैं. इज बिकम लाइक अ आइडल एंड वेरी मेन स्ट्रीम हीरो, विच इज सच अ रिमार्केबल थिंग. एंड आई ऑल्सो फील दैट दैट्स ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु फील कि नहीं, आप हीरो बनने के लिए आपको शुरू से ही कुछ ऐसे जीन्स होने चाहिए या ये होना चाहिए. एंड लॉट ऑफ इट इज एक्चुअली हार्ड वर्क, लॉट ऑफ इट इज हाउ दे डेवलप देयर पर्सनैलिटी एंड लॉट ऑफ टाइम दे स्पेंड, एंड आई गेस इन जिम एज वेल, एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे आउटडोर्स. द वेदर इज नाइस, सो आई होप यू आर स्पेंडिंग सम टाइम outdoors.

दोस्तों यारों मैं हूँ पारो एंड डू वांट टू से मे 13th इज आल्सो कॉल्ड नेशनल एप्पल पाई डे एंड आई वांट टू मेंशन समथिंग अबाउट एप्पल पाई क्योंकि देयर वाज अ टाइम मैं मुझे अभी भी बहुत पसंद है आई यूज्ड टू इट्स यूज्ड टू बी माय फेवरेट डेजर्ट सो इफ देयर आर एप्पल पाई लवर्स हियर और इसलिए भी मुझे लगता है कि इट वॉज माई फेवरेट बिकॉज वन आई केम टू द यू एस एज एन एडल्ट आई हैड नेवर ईटन एप्पल पाई एप्पल तो मैंने खाया था लेकिन कभी एप्पल पाई नहीं खाया था इंडिया में और अभी भी मेरे ख्याल से बहुत कम जगह मिलता होगा एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप डेफिनेटली दैट वाज नॉट एट ऑल वेल नोन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड इट वाज अ वेरी नोवल एक्सपीरियंस फॉर मी तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू ईट एवरी डे और फिर मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारी कैलोरीज है और ये अनहेल्दी है तो आई रियली रेयरली स्प्लर्ज इन दैट आई रियली रेयरली ईट दैट बट इफ यू आर एप्पल पाई लवर्स वेल टुडे इज योर डे मे बी यू वांट टू ग्रैब एन एप्पल पाई ऑन योर वे बैक होम और वेयर एवर यू आर गोइंग Or you can make yourself. Kai log, it's very easy to bake at home as well. So if you are an apple pie lover like me, I want you to know today is your day. And you can call and talk about it, 972-355-5555. We will be heading into a short commercial break. And after that, I will be back right here. Thank you for listening to 104.9 FM, Funisha Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
5: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit indianattirefrisco.com.
7: भूख लगी
8: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
11: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business के कुछ सिम्टम्स है, profits है but no cash liquidity। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
17: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Simbuka Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.

Thank you so much for your calls and thank you for such amazing feedback. I really enjoy it, whether you say good things about our products, jo bhi hamare clients unki baat karte hain, Fun Pizza Kitchen ki aapko tarif karte hain, aur aapko gaane pasand aate hain, aapko baate pasand aate hain. I want you to know that please keep spreading joy and keep sharing anything positive with the world. Hamare saath karte hain, mujhe bahut acha lagta hai, but please do with others as well, do with your friends. एक गुजारिश है, अगर आज के पूरे दिन में आपने किसी एक इंसान को नहीं बोला है अभी तक, एक से ज्यादा को बोला है तो बहुत ही अच्छी बात है, यू कैन पैट योर बैक, बट अगर आपने नहीं अगर किसी को कुछ पॉजिटिव बोला है, सो मेरी गुजारिश है, घड़ी में हुए हैं 8 बजे हैं, अभी भी वक्त है दिन ढलने में, दिल मतलब सूरज ढल गया लेकिन हमारा दिन नहीं ढला है. हम लोग साउथ ईस्ट एशियन है, विच मीन्स दैट हमारा लंबा टाइम तक यू नो इवनिंग चलती है, एंड दैट इज विच मीन्स दैट इट गिव्स यू मोर टाइम. So if you have a friend or somebody, a family member, somebody ghar pe ho sakte hain, just say something positive to them and just see how they smile. And agar kisi ke saath agar jhagda hai to zaruri boliye, jhagda sab khatam ho jayega. Because today is a very special day. Mujhe sochti hu May 13 jo hai, which is May 13th. Aur isko agar Hindi mein iski baat kare to ye hai May 13. और इस बात को जो ये बात है कि मैं तेरा तू मेरी, एंड ये तो खैर बहुत सारे गाने हैं इसके ऊपर, मैं तेरा तू मेरा तू मेरी एंड ऑल दैट लाइक दैट, बट इट ऑल्सो इज़ अबाउट कनेक्शंस, राइट? क्योंकि अगर हम किसी के होते हैं, कोई हमारा होता है, तो दैट ऑल्सो मीन्स इट्स अबाउट कनेक्शन, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट द स्पेशल बॉन्ड दैट वी शेयर. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस आवर ऑफ अ प्रोग्राम विच इज related to today, which is May 13th. So if you have someone special जो आपको लगता है या तो वो आपका है, आपकी है, बच्चे हो सकते हैं, परिवार, मतलब सारी दुनिया ही definitely हम सब की है, and that is how I feel truly. But if you have someone special that you haven't yet dedicated something special to them recently, please call in 972-355-5555 and you can request a song for them. And if you have a song that has a May 13, which is aaj ka din, then you can call in and request that song, like this song, May 13 Boyfriend.

0: हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं हमारे लिसनर। हेलो सर, आप हैं हमारे साथ अभी?
1: हाँ
0: जी
1: है।
0: हाँ जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको ऑन एयर ट्रांसफर कर दिया क्योंकि आप इतनी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, तो मुझे लगा हमारे लिसनर्स भी इसके साथ रिलेट करेंगे। तो आपने कुछ, आप बता रहे थे कि आप अपने परिवार वालों को बोल रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों वियर्ड एक्ट कर रहे हैं अगर आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, राइट?
1: नहीं, देखो भैया,
0: हाँ
1: आप
0: जी
1: जो बोल रहे हो कि कुछ से समथिंग नाइस एंड ऑल दैट,
0: यस।
1: वो सब गोरे लोगों के लिए अच्छा है। देसी
0: अरे नहीं नहीं
1: के
0: सर
1: घर
0: जी,
1: पे जाके अभी बोलोगे, अभी मैं मेरी बेटी से बोलता हूँ तो बोलते हैं, व्हाई आर यू एक्टिंग वियर्ड डैड? और बीवी पूछती है, तबीयत तो ठीक है?
0: देखिए, इसका इसका ये रीजन है कि आपने काफी टाइम से नहीं बोला है, तो और ज्यादा जरूरी है। अब आप रोज बोलिए, एक हफ्ते बाद वो बहुत चेंज हो जाएंगे, मैं कह रही हूं। क्योंकि ये क्या होता है ना, हम लोग, देखिए हमारा कल्चर, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे कल्चर में बहुत फॉर ग्रांटेड कई बार हम लेते हैं। हमें लगता है कि यार इनको तारीफ करने की क्या जरूरत है। कई बार मेरे परिवार में भी लोग बोलते हैं, तुम्हें पता तो है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, हम तुम्हें नहीं पता है। जब तक आप दूसरे को बोलेंगे नहीं, उसे एग्जैक्टली नहीं पता होता है। तो हम लोगों को बोलते रहना चाहिए, और वो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे कि आप कितना उनकी केयर करते, जानते हैं, लेकिन एक एश्योरेंस इंसान को चाहिए।
1: क्या बात है। नहीं, वो सही है, बट मोर आई वाज सेइंग मोर इन अ जोकिंग वे। सो
0: यस
1: थैंक यू,
0: यस, आई नो, थैंक यू
1: थैंक
0: सो
1: यू।
0: मच। कौन सा गाना सुनेंगे आप सर?
1: बदतमीज दिल।
0: इतनी अच्छी बात के बाद आपने बदतमीज दिल गाने की फरमाइश कर दी। चलिए कोई बात नहीं, मैं वही लगा देती हूँ। थैंक यू सो मच
1: ठीक है, थैंक यू, बाय।
0: सर। अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ये सर ने, ये ना सिर्फ जो हमारे लिसनर हैं, उन्होंने ना सिर्फ मेरी बात सुनी, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि अगर आपने किसी, कोई है आपके परिवार में हो सकते हैं, या कोई दोस्त हो सकते हैं जिनकी आपने अभी तक, आपने अगर पूरे दिन में किसी की तारीफ नहीं करी है, तो प्लीज़ डू इट, ऐसा मैं कह रही थी। और हमारे इतने अच्छे लिसनर हैं कि उन्होंने ये बात मानी, और ही डिड दैट। सो थैंक यू सो मच सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने ये मेरी बात सुनी और मानी। एंड द रीजन आई डू दैट इज, कई बार मुझे भी ऐसा होता है कि आप लोग, अनएक्सपेक्टेड सा कॉल आता है किसी लिसनर का, और वो तारीफ करते हैं, और पहली बार उनसे बात होती है। मैं घर जाती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ उसके बारे में, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि हमारा ये, एंड ये साइंटिफिक स्टडीज के साथ ये प्रूव किया गया है कि जब कोई हमारी तारीफ करता है, कुछ अच्छी बात बोलता है, तो इट बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम, ये सब चीजें होती है। तो ये बहुत नेचुरल है, तो ना सिर्फ अच्छा लगता है, बट ऑल्सो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी आती है, और जो बोलते हैं उनके लिए तो आती ही है। तो आई कीप थिंकिंग अबाउट दैट व्हेन आई गो बैक होम, एंड इट जस्ट मेक्स माय इवनिंग सो परफेक्ट।
2: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर, मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा? तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते हैं।

0: थोड़ी देर पहले विक्की कौशल साहब के गाने की रिक्वेस्ट आई थी, और अभी रिक्वेस्ट आई है उनकी वाइफ के गाने की, यानी कि कैटरीना कैफ की. सो ऐश साहब ने करी है रिक्वेस्ट, एंड आई रियली लाइक्ड हाउ यू सेड अबाउट दिस ऐश साहब, क्योंकि आप कह रहे थे कि एक फिल्म है पार्टनर. आई थिंक इट इज सच फेवरेट ऑफ माइंड कि अगर आप मुझे नींद में भी ये कह दें, पार्टनर बोल दें, या फिर आप इस गाने का एक भी कोई वर्ड बोल दें, आई विल नो. आई वॉच दिस मूवी सो मेनी टाइम्स. इट्स सच अ वंडरफुल कोलाबरेशन कह सकते हैं, क्योंकि गोविंदा साहब तो बहुत अच्छी कॉमेडी करते ही हैं, बट आई रियली लाइक देयर कॉम्बिनेशन हियर विद सलमान खान एंड गोविंदा. द क्रेजी गोविंदा इन दिस एंड सलमान हिज पार्टनर. ऐश, देयर इट इज फॉर यू.
1: Such a stupid basket.

Thank you so much for tuning in to 104.9 FM. Batana chahti hu aapko that this segment is brought to you by Umar Khwaja with traffic updates around DFW and accident report. If you're involved in a car or truck accident or a slip and fall incident, hopefully not, attorney Umar Khwaja will fight your case if something like that happens. As I said, kai baar hota hai, zindagi mein is tarah ki cheeze ho jati hain, kuch slip, kuch fall, kuch accident, is tarah ki incidents ho jate hain. But I want you to know that attorney Umar Khwaja is on your side and will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful, so you need an attorney that will make sure you are compensated. You don't pay until you win. Free consultation ke liye aap unka number call kar sakte hain 469-300-5046 or you can visit attorneyomar.com. aur main hu paro aur main isliye bol rahi hu kyunki meri achanak se awaaz kaise badal gayi mujhe khud nahi samajh aa raha. Bolte bolte I just realized it abhi is waqt ki meri to thodi आवाज ही बदल गई है. सो आई हैव टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड टू माय वॉइस ऑल ऑफ अ सडन. बट फिलहाल लेट्स कीप एंजॉयिंग सम वंडरफुल म्यूजिक ऑन वेंसडे इवनिंग. एंड दिस इज अ सॉन्ग दैट टेक्स मी बैक टू अ गोल्डन टाइम इन इंडिया. बहुत ये गाना होता था, बहुत टाइम पूरे टाइम चलता रहता था आसपास. व्हेन आई वाज यू नो आई लिव्ड इन इंडिया, ये तब की बात है. आई थिंक ये कब की फिल्म है, 1998 की, सो लेट 90s की बात है. एंड सो मेनी मेमोरीज. एंड मेरा भी मन करता था कि कभी मैं ट्रेन के ऊपर चढ़कर इस गाने या इसकी तरह से

डांस करो. बट डिस्क्लेमर बताना चाहती हूँ कि नहीं, आई डिडंट डू इट, वी शुड नेवर डू इट. इट्स द बट इट दिस इज अ सॉन्ग दैट हैज क्रिएटेड, स्पेशली द सिनेमाटोग्राफी एट दैट टाइम वॉज सो यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, दैट नॉट ओनली द सॉन्ग एंड द सिंगिंग एंड द म्यूजिक एंड द कोरियोग्राफी, बट इट्स द सिनेमाटोग्राफी दैट रियली स्टोल द हार्ट्स ऑफ द पीपल. पारो इन द हाउस.

आई थिंक दिस मस्ट बी अराउंड द टाइम जब सनसेट हो गया होगा. मैं जब आई थी स्टूडियो में तो ऑब्वियसली सन बाबा थे ऊपर, बट आई बिकॉज आई बीन विद यू सिंस 7 एंड आई विल बी हेयर टिल 9. लेकिन सनसेट आई थिंक आज टाइम जो है 8:18 था, तो हो गया होगा सनसेट. लेकिन ऐसा कहते हैं एवरी सनसेट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेट, रीच फॉर द स्टार्स इवन इन द इवनिंग. इन फैक्ट स्टार्स आते ही सन के जाने के बाद हैं. तो रात जो है वो है इज द टाइम टू रिफ्लेक्ट, to reset and to reach for the stars. Paro in the house. I'll be back after a short commercial break. After the song and a short commercial break, Paro will be back.

0: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है। हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सस। चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com। अनीता चुंद्रू, योर लाइफ विद राइट डायरेक्शन।
1: कॉन्टैक्ट 9453387670। ईमेल astro111city@gmail.com और विजिट टैक्सी एट 5200 मेमोरियल ड्राइव, कॉलोनी, टेक्सिस।
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
5: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पनेशिया।
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession. Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
7: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

A very happy Wednesday evening to you all. घड़ी में हुए हैं 8:34 and I will be with you for another 30 minutes. 30 minutes से थोड़ा सा कम, क्योंकि 9 बजे तक रहती हूँ आप लोगों के साथ. 7 बजे से चल रही है हमारी ये गाड़ी and we are going to play some more songs as well. And because ऐसा कई दफ़ा होता है मेरी आवाज़ की कुछ एक डैलस के वेदर की तरह कुछ एक प्रॉब्लम है कि वो बदलती रहती है. एंड आज फॉर वेरी सडनली माई वॉइस changed and so that whenever that happens मुझे एक बड़ी interesting बात हमारे listeners बोलते हैं जब आपकी ऐसी आवाज बदल जाती है तो ये रानी मुखर्जी वाली आवाज हो जाती है. रानी मुखर्जी's voice is such a strength of hers. लेकिन आप जानते हैं कि ये जो strengths हैं, चाहे ये रानी मुखर्जी की वॉइस हो या अमिताभ बच्चन की हाइट हो, जिनकी वजह से उन्हें जाना जाता है, जो उनकी सिग्नेचर ये कह सकते सिग्नेचर मार्क है, which is something that people so much love about them and identify them with that. शुरुआत में खाली यही दोनों नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो जिसकी जो अपनी इन जो उनकी या तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है या कोई स्टाइल है या कुछ इस तरह की उनकी एट्रीब्यूट्स हैं जिसके लिए उनको बुली किया गया था, उनको कहा गया था दैट यू आर नॉट इनफ. तो कई बार अगर आपको जिंदगी में कोई बोले कि ये आपकी चीज़ है जो खराब है, जो ठीक नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, डोंट लिसन टू देम, जस्ट कंटिन्यू विद दैट, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि जैसे रानी मुखर्जी की आवाज़ जिसको लोग कहते थे, लोग नहीं कुछ लोग कहते थे, खराब लोग कहते थे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग कहते थे कि बहुत खराब आवाज़ है, उनकी डब की जाती थी, उनकी आवाज़ ओरिजिनल आवाज़ नहीं रखी जाती थी, कि बाद में लोग इसी आवाज़ के दीवाने हो जाएंगे. अमिताभ बच्चन की उसी हाइट जिसके लिए लंबू बोल के उनका मजाक उड़ाया जाता था, कि बाद में लोग उसी हाइट की बहुत सारी लड़कियां दीवानी हो जाएंगी. और जैसे कि पारो है पारो के लिए मेरे लिए लोग बोला करते थे, मैं आई यूज टू गेट रियली पनिश्ड ऑल द टाइम इन स्कूल फॉर टॉकिंग टू मच. मेरी टीचर बोलती थी, तुम क्या समझती हो पारो अपने आप को, रेडियो पे बोल रही हो क्या, जो पटर पटर पटर पूरे टाइम बोलती रहती हो, दिस इज सच अ बैड हैबिट. वेल मे बी नॉट.

बताना चाहती हूँ आपको अबाउट देसी मंडी. एंड देसी मंडी इज द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन टाउन. सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट विच इज एंड ऑल्सो अबाउट देयर स्पेशल डील्स. एंड आई ऑल्सो क्विकली वॉन्ट टू टेल यू अबाउट somebody asked, so let me tell about that before, क्योंकि हमारे एक लिसनर भी जानना चाहते थे. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देसी मंडी इन अ लिटिल बिट, बट लेट मी टेल यू अबाउट, क्योंकि आई वांट हिम टू गेट द इन्फॉर्मेशन एज वेल अबाउट ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट जो होने जा रहा है कल से. सो दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट. दिस मे 14th टू 17th, स्टेप इन टू अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर्स, बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज स्लो डाउन. आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर 3 डेज, और ये कल शुरू हो रहा है. सो आई वांट यू टू नो दैट यू कैन रजिस्टर, यस यू कैन रजिस्टर एट oshoyuniversal.org. सो लेट्स लिसन टू सम मोर सॉन्ग्स एंड आफ्टर द सॉन्ग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ गिव अवे.

0: नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू प्ले इज कनेक्टेड टू अवर गिव अवे, बट उसके पहले आपको बता देती हूँ चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में. एंड लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट, लॉट ऑफ पीपल लव इट, लॉट ऑफ आवर लिसनर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट कि उनका एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा, खाना उन्हें बहुत अच्छा लगा. सो लेट मी हैव यू और गिव यू अ चांस टू विन ईदर द कढ़ाई पनीर और कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. और वेन यू आर देयर, स्पेशली इफ यू आर देयर एट द लंच टाइम, आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू कैन एन्जॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे with exciting new dishes rotating daily for lunch only. So that is at Chandigarh Bites, and that's going to be off McDermott Drive in LN. Aap visit kar sakte hain unki website, details ke liye chandigarhbites.com. And ab kaise karenge ye giveaway wo batati hu aapko. To ek gana hai, main usko chalaungi, and this is my always koshish rehti hai meri ek ki whenever I see that if there is a movie or there is a song or maybe there is any style that actually has a connection with the past, कि उस हम कनेक्शन की बात करें, हम अपने कनेक्शन की बात करें, अपनी हिस्ट्री की बात करें, एंसेस्टर्स की बात करें, अपने जो हम बहुत कुछ पीछे देश में छोड़ आए हैं उसकी बात करें, बिकॉज ये कनेक्शंस डिफाइन अस, दैट इज़ व्हाट आई फील. और यही चीज़ मेरी कोशिश रहती है गानों की भी. तो अगला मेरा गिव अवे कुछ इसी से रिलेटेड है. एक गाना मैं चलाऊंगी विच इज़ अ रीमिक्स, लेकिन इसका ओरिजिनल गाना बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड वॉट दैट फिल्म इज़ आपको मुझे बताना है. ये बड़ा आसान सवाल है क्योंकि फिल्म बहुत हिट है अपने ज़माने की, ओरिजिनल फिल्म, नॉट दिस फिल्म, बट ये जो ओरिजिनल गाना है वो किस फिल्म का है आपने मुझे बताना है. 9722355555. एंड सिंस बहुत सारे लोग हमारे कॉल करते हैं एंड आई वांट एवरीबॉडी टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सो आई वांट दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक ऑन एयर द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर, सो दैट वे इज यू गेट टू हियर द विनर गिव द आंसर.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन.

0: आप जानते हैं, एक स्टेट है इंडिया में जहां आप गा नहीं सकते, आपको गाना मना है वहां पर क्योंकि वो ऐसी जमीन है जहां पर क्लियरली वो लोग अपने नाम से ही बोला है उन्होंने कि गाना नहीं अलाउड है. कैसे बोला है, वेल बताऊंगी आपको इन अ लिटल बिट विद द सॉन्ग. और इसी के साथ आप जानते हैं कि अगर आपकी मौसी, देखिए मौसी बोलते हैं कुछ लोग, मौसी बोलते हैं, और डिपेंडिंग ऑन हाउ यू से इट, बट इट्स द मदर्स सिस्टर इज मौसी. कि अगर आपकी मौसी बहुत दूर रहती हैं, मेरी मौसी इंडिया में रहती हैं तो बहुत दूर रहती हैं, तो अगर मौसी दूर रहती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ये बताऊंगी मैं आपको आफ्टर दिस सॉन्ग. पहले थोड़ी सी सावन में आग लगा देते हैं.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी.

0: थैंक यू सो मच सुरभि जी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फन रिडल. मैंने कहा था अगर आपकी मासी बहुत दूर रहती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं. सो शी सेड फार्मेसी. एब्सोल्युटली राइट. एंड थोड़ा सा पीजे वाला है लेकिन मजेदार सा रिडल है. और दूसरा मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया में जहां आपको गाना अलाउड नहीं है. दैट इज नागालैंड. देखिए नाम में ही है नागा, गा मत, कुछ भी कर मर गा मत, मगर फनी शो में सब कुछ अलाउड है, गाना, मस्ती एंड एवरीथिंग. थोड़ा सा ही वक्त बचा, एक मिनट बचा है. सो आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग फॉर यू ऑल, बट आई विल सी यू टुमारो एट 7 PM. करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें और सुनेंगे बहुत सारे अच्छे गाने. एंड विद दैट आरजे पारो साइनिंग ऑफ.
1: अंदर का लाभ फटके बाहर आंदे.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
8: सब कुछ साफ रख सकते हो,
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
12: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
14: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
15: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
16: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
0: Kya matlab?
1: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
4: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
5: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
6: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
7: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी
6: K2 ड्राइव मतलब
7: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है
6: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
7: 100%
8: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400 to Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner. Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG.
8: Story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old

0: Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
2: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील करवाओ अभी के। रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज बहुत बड़ी चोरी है। डिपार्टमेंट

जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग 104।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

0: बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग
1: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां
2: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट बिकॉज़ ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस मेंशन फनएजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस कॉल अमरीन एट 214-909-6601
3: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को
2: Umbreen Salon. Style that moves with you.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

0: एंटरटेनमेंट से करते मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी।

spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
5: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको? जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे, मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी, अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई, हैगड़ पार्क, लानो, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: This is Anis Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

Don't touch that dial. Keep listening.

0: tracks that put you on the right track.
1: Okay.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG Fintax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
7: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: The one you've had on repeat is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Simbuka Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.
3: शबनमी रातों से लतीफ सुबह तक आपके साथ है फनेशिया।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट्स से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्ड ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फन इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Mixing in the house.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: अब तेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी तरफ

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।

जिंदगी है वश नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो

0: जंप है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
3: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fanesha Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग सफर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ है। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
1: Astrology readings of our guidance only and results may vary.
2: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: perfect.
1: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू अपने खाने का टेस्ट तो दिल कहता है दिस इज होम वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे नॉर्थ से साउथ स्ट्रीट से फेस्टिव हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस अनमैच्ड वैरायटी अनबिलीवेबल डील्स ओनली एट देसी मंडी Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
3: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
4: Excuse me. It's called being loyal.
3: It's called being predictable.
4: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
3: And what's so special at Neon Cactus?
4: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
3: Not bad.
4: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
3: Okay, this I didn't expect from you.
4: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
7: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
9: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
12: बैठ जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
12: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
16: Dallas, what if going to a clinic actually felt enjoyable? On May 16, step into a whole new healthcare experience at Lunoxy Medical, Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. Sip from a custom latte bar, enjoy nothing bun cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting MedSpa prizes. Visit Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205. In Frisco, Lunoxy Medical, modern care, warm experience.
17: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको? जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे, मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई हैगड़ पार्क दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक अपने देश के खाने का स्वाद संगीत रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव फ्री एंट्री फ्री पार्किंग मिलते हैं 31 मई को आइएगा जरूर स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं.

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज गपशप गली विथ मीटू। और अगर आप वंडर कर रहे हैं कि भाई शबनम जी कहाँ है, शबनम जी एक छोटे से वेकेशन पे गई हैं। हम मंडे को शी विल बी बैक। इन द मीन टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू हियर इज ब्रिंग योर मॉर्निंग वाइब्स राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM। और मेरा और आपका साथ रहेगा 12:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। मैं 10 से 12:30 के बीच आती हूँ, लेकिन सुबह आज और कल की मेरी और जल्दी होने वाली है, एंड देयरफॉर बी विद मी। ऑलराइट, दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज का मौसम कुछ आराम से ही जाएगा हमारा। इट विल बी वार्म टुडे एंड इट विल बी मोर विंडी एंड इट विल बी मोर ह्यूमिड एज वेल। वेदर अपडेट आई ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड मच मच मोर बियॉन्ड दैट। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

एंड इस हरी वरी में आप ये याद रखिएगा कि हम आपके साथ हैं. नो वरीज, इट इज थर्सडे लेडीज एंड जेंटलमैन. हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ यू. 14th of May और हमारी स्टूडियो में इस वक्त इट इज 8:16 एंड वी विल गोना मेक श्योर दैट यू आर यू नो अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टुडे. सबसे पहले तो वेदर से शुरू किया जाए. क्या कहते हैं आप? Another hot day is ahead of us and Wednesday ka high hamara kuch 91 ke aas paas jo pahuncha tha. So aaj it is going to exceed that and we are going to reach the 92s and the 93s in the afternoon that you can expect today. Aur hamara wind bhi jo hai gust thoda sa badhega, becoming breezy at 15 to 25 miles per hour. Aur ye aap logon ke liye aaj ka weather jo main bata rahi hu. And the low will be around 60s to lower 70s that we are going to see. Friday will be a more humid and windy day. If you are thinking this is what you are not enjoying, well, it is a better day. So really, make sure that you make the best of it, okay? Aur iske alawa, main aapko batana chahti hoon, kal bhi kafi windy hoga. And the temperatures will be, 90s that we are going to, as I told you, 90s and above that we are going to get. And a very low storm chance may develop late Friday evening, mainly west and northwest. जैसे कि बोवी और जैक्सबोरो वो सब एरियाज में आई थिंक द चांस ऑफ स्टॉर्म कैन डेवलप एंड इट इज अ वेरी लो चांस. सो वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट्स वॉट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल हियर. इसके अलावा आज का तो हमने वेदर बताई दिया, कल का भी लगभग बताई दिया. सैटरडे इट इज गोइंग टू बी अराउंड 90 अगेन एंड लो विल बी अराउंड 72. इट विल बी पार्टली क्लाउडी, वेरी वार्म एंड ब्रीजी. एंड संडे the chance of showers and thunderstorms in the evening hours that we might see, with again a high of 90 and a low of 72. All these days, all through the weekend, we are going to see a very windy kind of a day. Now that being said, let's dive straight into more music right here on Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together.

इफ यू एंजॉय दिस सॉन्ग, मुझे पूरा यकीन है कि ये अगला गाना भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. 14th of May इट इज, और 14th of May के साथ ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जुड़ी हैं. दैट इज वॉट एग्जैक्टली आई विल गेट फॉर यू राइट आफ्टर द ब्रेक.

0: एंड इट इज़ गपशप गली विथ मी टू दैट यू आर ट्यून्ड इनटू. और यहाँ पे मैं ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में बताना चाहती हूँ. आफ्टर ऑल 1998 से दे हैव बीन सर्विंग द कम्युनिटी. और इतने साल कंपनी कोई तभी चल सकता है जब लोगों से उन्हें बहुत सपोर्ट मिला है. और लोग तभी सपोर्ट करेंगे जब उन्हें रिजल्ट मिला हो ड्रीम होम मॉर्गेज से. सो फॉर होम ओनरशिप एंड एवरीथिंग एल्स डू गेट इन टच विद देम. स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस दैट दे ब्रिंग फॉर यू एंड मेक योर ड्रीम होम become a reality for all of you. And uske alawa
1: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
2: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
1: के टू ड्राइव मतलब
2: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, EFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
1: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
2: 100%
3: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402. Keto Drive, Dallas's smartest fleet partner. Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: ब्रेकिंग न्यूज. होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: Chicken banana?
6: Bro, banana nahin. Banana. Matlab, make the chicken right.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
9: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
8: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
10: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
11: आती है यार, बहुत आती है. इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
7: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं. विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
11: सच में बिल्कुल घर जैसा.
7: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
12: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
13: Tracks that put you on the right track.

It is May 14th, ladies and gentlemen. 2026 से बहुत पीछे ले जाने वाली हूँ आपको और इस exciting chapter को हम आपके साथ एक साथ हम जो ये पन्ने पलटने वाले हैं. Let's get you the news where आपको पता है कि एक वक्त पे ऐसा protest हुआ था, एक ऐसा march हुआ था कि जहाँ पे लोग extra taxes pay करने के लिए बिल्कुल तैयार थे. Sounds completely unbelievable, right? तो चलें 14th में 1932 की बात करने वाली हूँ यहाँ पे. एंड मे 14th 1932 में उस वक्त यूएस में कम्प्लीटली ड्राई लॉ यानी कि प्रोहिबिशन चल रहा था जहाँ अल्कोहल बिल्कुल बैन था. पर मे 14th को पब्लिक का पेशेंस जो है एकदम ख़त्म हुआ एंड न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जिमी वॉकर की लीडरशिप में करीब 100,000 लोग फिफ्थ एवेन्यू पर उतर आए थे एंड एक ही नारा था इन सब का, वी वॉन्ट बियर. उनका आर्ग्यूमेंट एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल था. इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट, दे वर बेसिकली सेइंग लेट्स गो बैक, लेट्स गेट बैक टू सेलिंग बियर लीगली. उस पर टैक्स लगा दो, उसका जो टैक्स रेवेन्यू जो वापस आएगा वो वापस इकोनॉमी में डाल दो और क्रिएट जॉब्स दैट वे. उस ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर जब जॉब्स और पैसे की सख्त ज़रूरत थी, ये सोल्यूशन एकदम परफेक्ट लग रहा था. तो ये परेड जो एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेकल था, ये दोपहर में 12 बजे शुरू होने वाला था पर उससे कहीं ज़्यादा पहले शुरू हो चुका था एक्साइटमेंट के मारे. पूरे रास्ते पर लाइव बैंड स्टेशन थे, जस्ट इमेजिन दिस. और जब म्यूजिशंस ब्रेक लेते तब ट्रक्स बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स और रिकॉर्ड्स प्ले करते उस वक्त. और इसमें हर क्लास के लोग शामिल थे, स्टूडेंट्स से लेकर लेबर लीडर्स और यहाँ तक कि सिविल वॉर वेटरन्स भी फुल यूनिफॉर्म में इस मार्च का हिस्सा बने. उन्होंने सेंट्रल पार्क में लंच किया और रात के 12 बजे तक वहाँ नारे वारे लगाए, हु वांट्स बियर. And we do, and that did happen. And finally, वो movement सिर्फ न्यूयॉर्क तक limited नहीं रहा. Chicago, Boston, Milwaukee, Detroit जैसी cities में भी thousands of people marched on the streets. इस movement का impact इतना बड़ा था कि उस वक्त के presidential candidate Franklin D. Roosevelt को ये notice करना पड़ा. And he saw the tide of public opinion and promised not to stand in the way of prohibition's repeal. And guess what? प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने एक साल के अंदर लो अल्कोहल बियर और वाइन की सेल अलाउ कर दी. लेस देन अ ईयर आफ्टर दैट प्रोहिबिशन वॉज एक्चुअली ए हिस्ट्री एंड इट ऑल हैपेंड, इट ऑल स्टार्टेड ऑन दिस डे. यू आर लिसनिंग टू फन एजियो रेडियो 104.9 FM और ये है गपशप गली विथ मीठू.

कुछ गियर बदलने वाली हूँ क्योंकि वाकई में अगले महीने हमारा गियर ही तो बदलने वाला है विद फीफा वर्ल्ड कप स्टार्टिंग राइट. लेकिन क्या आपको पता है कि इस फीफा वर्ल्ड कप में भी हाफ टाइम होने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. शकीरा, मडोना, के पॉप सुपर स्टार्स, BTS विल हेडलाइन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप फाइनल हाफ टाइम शो और ये अनाउंस हुआ आज ही. और ये वर्ल्ड कप फाइनल जो कि July 19th को एट न्यू जर्सीज मेटलाइफ स्टेडियम दैट वी ऑल आर गोइंग टू वॉच ईदर देयर या तो फिर अपने अपने स्क्रीन से हम चिपक के देखने वाले हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड ऑन टॉप ऑफ इट्स अटेंडीज. ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप 2026 जो है वो स्टार्ट होगा June 11th से इन मेक्सिको सिटी विद मैचेस टू बी प्लेड इन मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस द US, कैनेडा एंड मेक्सिको. और हमारे यहाँ पर यानी कि डैलस में शुरू होगा June 14th से एंड AT&T स्टेडियम को जो नाम दिया गया है फॉर द फीफा वर्ल्ड कप डैलस स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा. और 9 जो ग्रुप मैचेस होने वाले हैं वो सारे होंगे और फाइनली सेमीफाइनल इज ऑन July 14th एंड वी आर गेटिंग रेडी एज वेल. बहुत सारे लेवल्स पे तैयारियां चल रही है इन डैलस एज वेल. अबाउट द फाइनल हाफ टाइम आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस क्यूरेटेड कोल्ड प्लेस क्रिस मार्टिन ही विल बी परफॉर्मिंग एज वेल एंड इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ग्लोबल सिटीजन एंड बेनिफिट द फीफा ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन फंड. द फंड इज ए लैंडमार्क इनिशिएटिव और ये रेस करने वाला है $100 million एंड दैट इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड फुटबॉल फॉर चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट द टूर्नामेंट $1 फ्रॉम एवरी टिकट दैट विल बी taken into account to match and FIFA World Cup 2026 will match it and you know this fund is going to be created which will be donated to the organization FIFA Global Citizen Education Fund. And how exciting is that, ladies and gentlemen? First ever जो होने वाला है ये हाफ टाइम शो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं. लेकिन मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कभी रही हूँ अगर शकीरा के परफॉर्मेंस का तो इट इज़ दैट वाका वाका दैट शी डिड फॉर 2010 फीफा वर्ल्ड कप एंड इट वाज सो फैब दैट प्रमोशनल सॉन्ग दैट देयर वाज दैट वी हर्ड.

0: यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM, जहां पे ना आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द नंबर दैट यू हैव विथ यू. आई एम श्योर यू हैव सेव्ड इट. इट्स 972-235-5555. वी वांट यू टू गिव अस अ कॉल इफ द म्यूजिक ऑफ योर चॉइस इज नॉट बीइंग प्लेड, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ आपकी पसंद हो और कुछ मेरी पसंद हो. दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड आई विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक एज वेल.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए.
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी.
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
11: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
12: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इन टू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
6: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
15: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
6: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
15: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
8: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno
16: Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: Voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shriram Chandra live club edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Simbuka Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.
17: Tracks that put you on the right track.

लिसन, ऐसा है कि मई का महीना प्रैक्टिकली एंटरटेनमेंट और ग्लैमर का मंथ माना जाता है. पहले तो मेट गाला हुआ है, और अब जो द कान फिल्म फेस्टिवल या कैन फिल्म फेस्टिवल जो कहना चाहिए, ये प्रोनंसिएशन ही समझने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन फाइनली आई एम हियर. एंड द प्रोनंसिएशन फॉर दैट प्लेस एंड दैट इवेंट इज कैन फिल्म फेस्टिवल, लेडीज एंड जेंटलमैन. अब देखिए, द मेट गाला इज ऑफिशियली ओवर. इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे पिक्चर्स देख चुके हैं, राइट? एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इट वॉज अ ट्रीट फॉर द फैशनिस्टास. उसका मैं पर्पस यही मानना चाहती हूँ कि इनोवेटिव आइडियाज, कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल्स फॉर द फैशन वर्ल्ड, क्रिएटिव डिजाइनिंग जो देखते हैं इस दुनिया का, वो मेट गाला में आपको मिलता है. बट दैट चैप्टर इज क्लोज नाउ. अब पूरी दुनिया का फोकस अब शिफ्ट हो चुका है फ्रेंच रिवेरिया पर. कैन हैज इट्स फेयर शेयर ऑफ ग्लैमर ऑन द रेड कार्पेट, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. इन्जॉय योर फेवरेट सेलिब्रिटीज एंड जज हाउ दे हैव वोन देयर डिजाइनर क्लोथ्स. आप चाहे तो उसे पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन लेट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट दैट. यू नो, द कैन फिल्म फेस्टिवल इज वे बियॉन्ड जस्ट पापराजी एंड डिजाइनर गाउन्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल इंडियन सिनेमा इज मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन कैन इन ए वेरी मैसिव वे. और मैसिव सेलिब्रिटी हेडलाइंस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. फ्रॉम बोल्ड स्टूडेंट शॉर्ट्स एंड इमोशनली लेड डॉक्यूमेंट्रीज टू यू नो रिस्टोर्ड पैरेलल सिनेमा क्लासिक्स, हमारी देसी स्टोरी टेलिंग सच में एक ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक डिवर्सिटी और एम्बिशन शोकेस कर रही है. लेट्स गेट आवरसेल्व्स इन्वॉल्व्ड इन दैट एज वेल. और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपको पता है, एक सिर्फ हिंदी फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं है. दिस ईयर कैन लाइन अप जो हमारे इंडिया से गया है, इट इज पंजाबी, मलयालम एंड कन्नडा सिनेमा एज वेल. ये ऐसी स्टोरीज हैं जो हमारी आइडेंटिटी, मेमोरी, सर्वाइवल, फैमिली और रॉ ह्यूमन इमोशन से बहुत डीपली जुड़ी हैं. तो दिस इज अ पावरफुल रिमाइंडर दैट सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इंडियन फिल्म्स टुडे आर कमिंग फ्रॉम sort of fearless independent voices pushing storytelling in bold new directions. और इसीलिए कैन के उस फैशन स्टेटमेंट के अलावा भी जो है उसमें डाइव करें, which is what it is all about. ज़रूर जाएं और पता करें उन फिल्मों के बारे में जो हमारे इंडियन स्पेस से आ रही हैं. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. It is my chance to play another nice song for all of you. Going to a short commercial break. Break se wapas aake ek giveaway ki taiyari kar rahi hu aap logon ke liye. To bane rahein right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. Ye hai Gapshap Gali with me too.

0: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
1: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
0: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
1: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
0: कैसे?
1: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन, हर ओकेजन को सूट करे.
0: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
1: या कैरेटली इन काइंड.
2: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
3: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
4: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safal के योग
0: है. अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
7: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
6: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
7: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
6: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
7: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
6: नंबर बोल जल्दी.
7: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
8: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
9: Dallas, what if going to a clinic actually felt enjoyable? On May 16, step into a whole new healthcare experience at Lunoxy Medical, Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. Sip from a custom latte bar, enjoy nothing bun cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting MedSpa prizes. Visit Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205. In Frisco. Lunoxy Medical. Modern care, warm experience.
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
12: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
13: Tracks that put you on the right track.

भूल का क्या है, भूल तो कभी भी हो सकता है, राइट? गलती तो इंसान मात्र से ही होती है. एंड एक्सीडेंट्स के बारे में जब भी मैं सुनती हूँ ना, तो आपको एक किसी से हिदायत मिल ही जाएगी कि थोड़ा केयरफुली चलाना था इफ़ यू आर इनटू अ कार एक्सीडेंट एंड एवरीथिंग. सी, एक्सीडेंट बता के नहीं आती है, एक्सीडेंट इसीलिए उसका नाम एक्सीडेंट है, राइट? और जब हो जाए और आपको लगता है कि अगली पार्टी को आपको कुछ कॉम्पनसेशन देना चाहिए, दैट्स वेन यू एक्चुअली टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि इतना कुछ आपके साथ ऑलरेडी हो चुका था. इट्स ओवरवेलमिंग टू गो बैक एंड फोर्थ विद द प्रोसेस, और आप छोड़ देते हो. ऐसे में आई डू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ अटर्नी ओमर ख्वाजा. डू रिमेंबर कि कोई भी अगर आप ऐसे स्लिप एंड फॉल हो जाए, या फिर वर्क प्लेस इंजरी हो जाए, या कुछ एक्सीडेंट में आप हों जहाँ पे आपको लगता है कि आप कॉम्पनसेशन डिजर्व करते हैं, गेट इन टच विद देम राइट एट द बिगिनिंग. 4693005046. आई मीन, इफ़ यू हैवन्ट बीन एबल टू डू दैट सो फार, अभी भी वक्त गया नहीं है, आप ज़रूर उनके साथ कनेक्ट करें. दे विल टेल यू वॉट दे कैन डू फॉर यू. और फ्री कंसल्टेशन है आप लोगों के लिए, एंड उनका एक सबसे बड़ा प्रॉमिस जो आपके लिए है, एंड इट इज़ यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन. दैट इज अंटिल यू डोंट गेट योर कॉम्पनसेशन, यू डोंट हैव टू पे. attorneyomer.com इज द वेबसाइट. एंड वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट नंबर टू कॉल फॉर फ्री कंसल्टेशन इज 4693005046. यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली विथ मी टू, और मेरी कोशिश यही है कि आपको एंटरटेन्ड रखूँ, इन्फॉर्म्ड रखूँ और साथ रखूँ. और साथ रहने की बहुत सारी वजह है. एक वजह तो मैं देना चाहती हूँ कि एक गिव अवे ना मुझे बहुत अच्छा लगता था. When I was on the other side of the fence long time back, ये गिव अवेज मुझे ना इतनी एक्साइटिंग लगती थी, क्योंकि ऑल सेड एंड डन हमें फ्री चीज़ अच्छा लगता है, और फ्री चीज़ जब कमाल की जगह से हो तो और भी अच्छा लगता है. सो दैट गिव अवे कमिंग अप फॉर यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट. आई वॉन्ट यू टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. कॉफ़ी पीते पीते हमारे साथ रहें और इन्जॉय करें फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

Listen, I've been spending way too much time scrolling through social media lately. और अगर आप भी मेरी तरह Instagram से चिपक के scroll करते हैं, तो आपने notice किया होगा कि हमारी drinks जो है एक painting जैसी लगने लग गई है. I'm talking about the crazy coffee shop trends taking over our feeds. You know, एक green wave जो कि जिसका नाम matcha है, जो जिसका taste मुझे समझ नहीं आता है. Seriously, अचानक से पूरी दुनिया इस bright green earthy powder के पीछे पागल हो गई है यार. आइस माचा लाटेस, माचा बोबा. लेकिन उस दिन जब मैंने माचा वो केक जो खाया ना, उतना बुरा नहीं लगा. एक्चुअली आई थिंक आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मे बी दैट इज वाई आई डिडंट फाइंड इट दैट बैड. लेकिन माचाइंस, क्या बोलूँ उनको जो माचा को पसंद करते हैं, माचाइट्स, क्या बोलूँ उनके लिए. मैं उनके तरफ से मुझे फ़ोन कॉल्स नहीं आए, इसलिए मैं अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहती हूँ. यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हाँ, हो सकता है ये क्वाइट टेस्ट है, लेकिन भाई टेस्ट नहीं डेवलप हुआ है मेरा, यही कह सकती हूँ मैं. कुछ लोगों के लिए इट्स द अल्टीमेट डिटॉक्स, और कुछ के लिए ना कहना ही बेहतर होगा. बट वेट, जस्ट व्हेन वी गॉट यूज्ड टू दिस वेरी ग्रीन, वेरी वाइब्रेंट ड्रिंक, तो एक और कलर आ गया अब तो भाई, पर्पल. इस ड्रिंक के बारे में आपने सुना है? दिस इज ऊबे. अगर आपने भी इस पर्पल ड्रिंक के बारे में सुना है लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किया है, वेल, यू आर नॉट अलोन. हम में से कई लोगों ने ट्राई नहीं किया है. ऊबे, इट्स यू बी ई. तो ऊबे एक्चुअली एक पर्पल यैम है फ्रॉम फिलीपींस, और आजकल ये हर एस्थेटिक कॉफ़ी शॉप में आपको मिल जाएगा, कैफ़े में मिल जाएगा. एक सुपरस्टार बन चुका है ऊबे लाटेज, ऊबे कोल्ड फोम. और वो दिन भी दूर नहीं जब ऊबे हमारे पेस्ट्रीज और बेकरी सेक्शंस में भी घुस जाएगा. टेस्ट में इट्स लाइक ए स्वीट नटी वनीला मिक्स्ड विद स्वीट पोटैटो काइंड ऑफ अ फ्लेवर दैट आई हियर, एंड इट विल गो विद लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट केस. इट इज़ ब्राइट, इट इज़ पर्पल, एंड इट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी इन्वाइटिंग फॉर एनी इंस्टा पिक्चर. सो यकीनन आप बहुत सारा देख रहे होंगे. सो येस, दिस इज समथिंग न्यू आई थॉट आई विल शेयर विथ यू. इट इज़ आफ्टर ऑल गपशप गली विथ मी टू.

0: ऑलराइट, नशा है ये हमारे डेलस के वेदर का, कि मतलब कभी इस पार होते हैं कभी उस पार होते हैं. वार्म एंड ब्रीजी वेदर विल बी इन स्टोर फॉर अस. ह्यूमिडिटी भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, विंडी भी बहुत होने वाली है, स्पेशली टुमारो एंड डे आफ्टर, ऑल थ्रू संडे. एक्चुअली द ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीजिंग एज वेल एंड इट विल फील समवॉट मगी थ्रू आउट द वीकेंड. और 90s में हमारा टेम्परेचर जो रहने वाला है. Enjoy the days ahead of us with us right here on Furniture Radio 104.9.
1: अपनी roots भी और Texas का swag भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. Royal Sona Masuri Rice हो, नानक पनीर हो या Parle Ji biscuits, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव Texan favorites जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर. सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
3: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha hai.
2: रोज का सेम प्रॉब्लम.
4: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
5: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज 5 to 13. कंटिन्यूस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
6: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
7: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेंशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. लुमिटी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां.
11: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फनेजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. Call Amreen at 214-909-6601
12: or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
11: Amreen Salon, style that moves with you.
13: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
14: An accident changed my life overnight. The pain made even simple things hard, and taking care of my family felt impossible. I was stressed, scared, and didn't know where to turn. Luckily, I found Omar Khwaja and team. They listened, treated me with respect, and explained everything clearly. They stood by me every step of the way. If you have been injured in an accident, you don't have to face it alone. Call the law offices of Omar Khwaja today. Because of them, my family and I can finally move forward.
15: Call now to 833-GET-OMAR. The law offices of Omar Khwaja. Your rights, their responsibility.
16: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता.
17: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स.
16: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
17: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट.
18: मे 14th टू मे 17th, अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स. रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. पॉज द नॉइज, meet yourself.
19: Tracks that put you on the right track.

And it is Wazir Patar, aur ye request thi Rahul ki. Thank you very much for tuning into Financial Radio 104.9 FM, bringing the community together. I'm covering for Shabnam ji, aur kal bhi aungi 8 baje se, and I'll stay with all of you until 12:30. Aur chahti hu ki aap kadam se kadam milate chale, gaane se gaana milate chale, aur wo tabhi possible hai agar wo gaane aap jo sunna chahte hain aap mujhe bheje, just like Rahul, 9722355555. Rahul ये नाम सुनते ही ना शाहरुख खान का ये जो है चेहरा याद आता है. आई एम श्योर यू हैव गॉटन दैट सो मेनी टाइम्स. राहुल नाम तो सुना ही होगा आपने इनका. यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विद मी टू, और मेरी गपशप जाने वाली है उस हरियाणवी गाने पर जो कि इट्स सरपास्ड द बॉलीवुड म्यूजिक ऑल्सो, और बिलबोर्ड पे बिल्कुल टॉप पे छाया रहा. क्योंकि अब पंजाबी फ्लेवर वाला गाना सुना है, मैंने सोचा कि अब बारी है कि कुछ हरियाणवी सुन लेते हैं. दिस सॉन्ग बाय द ब्रदर्स सुमित एंड अनुज, एंड दैट्स द बंजारे डुओ आई एम टॉकिंग अबाउट, और गाने का नाम बैरन.

That foot tapping music, although जो theme है वो heartbreak और longing का है, deep affection का है, and it trended at number one due to its relatable lyrics and heartfelt tone. And guess what? ये जो गाना है, ये first independent Haryanvi track रहा है जो top किया जिसने Billboard पर India में without a major label or Bollywood push. And that's the thing about the song Bairan जो आपने अभी भी सुना. अब क्योंकि वो regional flavors अगर लगा ही रहे, तो कुछ flavors हम आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कुछ गाने इतने पॉपुलर होते हैं, वी एंजॉय इट, वी सिंग ऑन द नोट्स ऑफ इट एंड ऑल्सो वी डांस अलोंग, लेकिन कई बार हमें आर्टिस्ट का नाम नहीं पता होता है यार, ये कितनी विचित्र सी बात होती है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये अगला गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ, उस गाने के सिंगर कौन है. As simple as that. And I will give you flavors of the flavor lounge. जी हाँ, आप दाल मखनी ढाबा स्टाइल चिकन करी जीत सकते हैं, which is a dine-in only option at the flavor lounge restaurant, which is located on Preston Road in Frisco. और आप जानती हैं कि इनका खाना कितना शानदार है. तो अगर आप शानदार खाना along with ढाबा स्टाइल चिकन करी या दाल मखनी जीतना चाहते हैं, तो आपको मुझे अभी अभी कॉल करके बताना होगा कि ये जो अगला गाना मैं प्ले कर रही हूँ, ये किसने गाया है. सिंपल सवाल.

क्या गाना है बॉस, एंड टेल मी सीरियसली, अगर आप नहीं नाचते इस पे ज़रूर नाचे हैं, आप नहीं गाते तो भी झूमे ज़रूर हैं इस गाने पर, लेकिन इस गाने के सिंगर का नाम नहीं पता, ये बड़े ताज्जुब की बात है। तो आज थोड़ी सी क्लास ले ली है हमने आपके यहाँ पर। पंकज और गौरव ने बिल्कुल सही कहा, बट पंकज वॉज द फर्स्ट कॉलर टू गिव मी दैट राइट आंसर, तो इसीलिए द फ्लेवर लाउंज का ये गिव अवे पंकज के नाम हमने किया। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू, द फ्लेवर लाउंज डोर्स आर स्टिल ओपन फॉर यू, आप जाएं और खाएं और मजे से बताएं कि इनके बारे में आपने कहां सुना। दिस इज फनीशियल रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। ऑल राइट, एक और गाना प्ले कर रही हूं। आप पंकज ने ना सिर्फ जीता है फ्लेवर लाउंज से, लेकिन एक गाना भी जीता है। एक्चुअली इन्होंने रिक्वेस्ट की है इस गाने की, तो व्हाई नॉट, दिस गाना ऑल्सो हैज अ रीजनल फ्लेवर, एंड हु वुड नो अबाउट दिस वन बेटर देन मी, क्योंकि भाई बोंग हूँ, बंगालन हूँ, और इसीलिए इस गाने में जो बंगाली फ्लेवर है ना, आई एब्सोल्यूटली लव, फ्रॉम द फिल्म लुटेरा।

0: As if इस म्यूजिक के साथ टोटली जेल इन कर रहा है जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ. इट इज़ अबाउट ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड ये आज से शुरू हो रहा है ऑल द वे टिल 17. दिस 3 डे इमर्सिव एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग टू हैव. जितने भी आपके स्ट्रेस हैं वो आप यहाँ से इससे मुक्त हो सकते हैं. इमोशनल ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा क्लैरिटी पा सकते हैं और अपने आप से वापस से रिकनेक्ट कर सकते हैं. Through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators that they have for you. क्योंकि कभी कभी ना ये छोटा सा पॉज लेना ज़रूरी होता है. अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है. एंड दिस इज़ योर ऑप्शन हियर. रजिस्टर करें universal.org पे जाके. एंड दिस रिट्रीट, ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट, स्टार्ट्स टुडे.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
5: K2 ड्राइव मतलब?
6: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
4: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner. Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना. अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh. Wonderful flavors. Zabia halal options. And plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
13: Is shehar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
14: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
15: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
16: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. याद है आपको? जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे, मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई हैगड़ पार्क लाना, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।
17: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

होप आप सबको इंतजार रहता है हम जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं फर्नीचर रेडियो 104.9 एफएम पे. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इनटू माय शो जो कि सुबह 8 बजे से आज शुरू हो चुका है. जी हाँ, आई एम कवरिंग फॉर शबनम जी एंड आई विल बी डूइंग दैट टुमारो एज वेल. तो जो मेरे शो को एंजॉय करते हैं प्लीज 8 बजे से जरूर ज्वाइन इन कीजिएगा. इट इज अ डिफरेंट लिसनरशिप दैट आई गेट एंड यू नो वॉट ऑल आर आरजेस हमारे जितने भी शोज होते हैं ना, हम सबको अलग अलग लिसनर्स मिलते हैं और जब हम ऐसे क्रॉस करते हैं यू नो सॉर्ट ऑफ एक दूसरे के शोज में, तो हमें वो दूसरे लिसनर्स भी सुनने को मिलते हैं, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है. एंड दिस इज आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टच विथ मोर लिसनर्स. फनीशा रेडियो 104.9 एफएम गपशप गली पे आपका स्वागत है. अगर आप अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं तो मौसम का हालचाल लेकर आने वाली हूँ थोड़ी ही देर में. Keep listening. It is 14th of May, ladies and gentlemen, और हमारी घड़ी में इस वक्त बजे हैं 10:08.

क्या अदा क्या जलवे हैं डैलस के वेदर के, क्या कहा जाए इसके बारे में, क्योंकि अभी जो मौसम है वो आने वाले दिनों में कुछ बदलने वाला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लेडीज एंड जेंटलमैन. वेल, अगर आज ब्रीजी है तो कल परसों नरसों विंडी होने वाला है, एंड इट इज ए टेम्परेचर दैट विल स्टे ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एट अराउंड 90-ish दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ थ्रू संडे. और जैसे कि मैंने कहा ना कि विंडी भी होने वाला है, एंड दैट विल इंक्रीज आर ह्यूमिडिटी लेवल्स एज वेल. और ये जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जाएगी हमारी. ए हायर चांस ऑफ शावर्स एंड स्टॉर्म्स कैन बी एक्सपेक्टेड अक्रॉस नॉर्थ टेक्सस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट वीक, एंड दीज रेन चांसेस एंड मोर क्लाउड कवर विल लीड टू हाइज होल्डिंग इन द 80s, लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट्स राइट, दैट्स व्हाट द शावर्स विल डू. संडे से ही थोड़ा बहुत बारिश की जो आइसोलेटेड स्टॉर्म्स होने के जो चांसेस हैं, दैट इज फ्रॉम लेट संडे दैट नाइट दैट यू विल बी सीइंग इट. राइट नाउ इट इज 81 डिग्रीज, टुडे इज हाई अराउंड 92, लो विल बी अराउंड 70, और कल का हाई कुछ 92 के आसपास. इट विल बी ब्रीजी, इट विल बी वार्म, इट विल बी मगी विद अ मिक्स ऑफ क्लाउड्स एंड सन, और 20% आपके जो चांसेस हैं वो कल से शुरू होने वाले हैं. और सैटरडे आई डोंट सी एनी चांस ऑफ शावर्स और थंडरस्टॉर्म्स, बट यस संडे को वापस से वो चांसेस आपके लिए हो सकते हैं. दिस इज द वेदर अपडेट ऑन गपशप गली विद मी टू ऑल द वे टिल 12:30. आई एम विथ यू.

घड़ी मिला लीजिए, इट इज़ 15 minutes past 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक. और हमारी इन इन सब बातों में ना एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो है मंडे और वेंसडे के लिए और फिर ट्यूसडे और थर्सडे के लिए. मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, थोड़ा आराम से खुलासे के साथ बात करना चाहती हूँ. एंड दिस इज़ अबाउट देसी मंडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर है इन आर टाउन. और यहाँ पे आपको ग्रोसरी पे तो डील्स मिलते हैं, लेकिन खाने पीने पे भी मंडे और वेंसडे को बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस फॉर ऑल ऑफ यू. एंड ट्यूसडे और आज आपके लिए बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चाट्स. तो आज अगर आप जाते हैं और ग्रोसरी शॉपिंग में लगते हैं तो उसके बाद डोसा या चाट खाने की तो बनती है, या डोसा और साथ में चाट खाना चाहे तो वो भी बनता है. जरूर जाएं एवरी वीकडे 5 PM to 9 PM. इट इज फॉर ऑल ऑफ यू एंड मी एज वेल यार, नो मिक्स एंड मैच अलाउड. लेकिन जरूर जाएं और इन्जॉय करें इनके ज़्यादा फ्लेवर्स और ज़्यादा सेविंग्स के साथ ऑल वीक लॉन्ग. इट इज एट देसी मंडी. यू आर ट्यून इन टू फनीशा रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मीठू.

That calming song takes me to a place that will calm your senses of jewelry, जहाँ पर आपको अपनी पसंद की ज्वेलरी मिलेगी, एंड दैट्स श्री कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. क्योंकि हर ज्वेलरी में एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ आपसे जुड़ती है, बिकॉज हर चीज़ पे ना लेने वाले का नाम लिखा होता है. और ज्वेलरी के लिए भी मैं ये सच में यकीन मानती हूँ कि ज्वेलरी यू लुक एट इट एंड इट कनेक्ट्स विथ यू इन अ वे कि आपको पता है कि यही मुझे लेना है. वैसे ही आपको बहुत सारी चॉइसेस जो वहाँ पे मिलती है, उस बहुत सारी में आपका अपने पसंद का भी यू विल फाइंड इन गोल्ड, डार्जलिंग डायमंड्स, एक्सक्विजिट कुंदन एंड पोल की ज्वेलरी दैट यू विल फाइंड दैट श्री कृष्णा. और ये है फ्रिस्को में, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दे हैव बीन क्राफ्टिंग क्रिएशन सिंस 1967. दिस इज गपशप गली विथ मीठू.

कुछ चीजें होती है ना, हम जिसे कैटेगराइज कर देते कि भाई बहुत जालिम है, जैसे कि ये ह्यूमिडिटी, आई जस्ट कांट टेक ह्यूमिडिटी यार। और ये जो आने वाले दिनों में और आज से जो ये मगीनेस शुरू हुआ है ना, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल। बट बिलीव इट और नॉट, इट कम्स विथ इट्स ओन प्लस। ये आपकी ना स्किन के लिए एक नेचुरल हाइड्रेशन का काम करती है, आपके ड्राइनेस को कम करती है, आपकी फाइन लाइन्स को मिनिमाइज करती है, आपको ज्यादा यूथफुल आपकी अपियरेंस होने लगती है। और मगीनेस डज दैट टू यू, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि स्वेट और वो जो ऑयल जो ट्रैप होता है डर्ट के साथ, उसके कारण क्लॉग्ड पोर्स हो सकते हैं, एक्नीज हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे वेदर में अच्छे से ना स्किन को क्लीन रखें और लाइट मॉइस्चराइजर्स यूज करें। सनस्क्रीन फिर भी यूज करना जरूरी है, कितना भी चिपचिपा आपको लगता हो, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज इट इन टुडेज वेदर। किसी ने मगीनेस को लेकर थोड़ी सी शिकायत की, तो मैंने सोचा बातचीत हो जाए यार स्किन के बारे में आप लोगों के साथ। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता है?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
1: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस। कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है। हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस। चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टैक्ट 9453387670। Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
6: Contact 9453387670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
1: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
3: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
1: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
8: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
9: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.
10: Tracks that put you on the right track.

और क्या मैं बताती हूँ डैलस में क्या चल रहा है. ऐसा है कि जून 11 से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, राइट? और जून 14 इज द फर्स्ट मैच दैट वी आर गोइंग टू हैव हियर इन डैलस, डैलस स्टेडियम में, यानी कि AT&T स्टेडियम में जो होने वाला है. और उसी से रिलेटेड जो तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, वेरी सून यू गोना सी ऑल द बैनर्स एंड एवरीथिंग कमिंग अप एंड द सिटी बीइंग ग्रूम्ड फॉर दिस बिग इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन. 9 जो स्टेज मैचेस जो होंगे हमारे यहाँ पर, और फिर 14 जुलाई को जो सेमीफाइनल होने वाला है यहाँ पर. इट इज़ अ बिग न्यूज़ लेडीज एंड जेंटलमैन. और इसी के चलते जो तैयारियां चल रही हैं उसमें कुछ म्यूरल्स की जो बात चल रही है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. डैलस इज लार्जेस्ट पब्लिक आर्ट म्यूरल जो कि शुरू हो चुका है, जिसपे काम द वर्क इज अंडर वे ऑन द लार्जेस्ट पब्लिक आर्ट म्यूरल हियर. और ये जो है इट इज गोइंग टू ओवरलुक द फ्यूचर 250 acre हैरल्ड सिमन्स पार्क विच इज बींग बिल्ट. आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट. और ये इसमें तो वक्त है, यानी कि द पार्क विल बी कम्प्लीटेड बाई 2028. इसका एक फेज शायद उसके पहले खुल जाएगा. ऑल ऑफ दैट विल इज गोइंग टू कंटिन्यू टू हैपन, बट फॉर द म्यूरल इट विल बी कम्प्लीटेड बाई द एंड ऑफ द मंथ, लेडीज एंड जेंटलमैन. और ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि वो जो एक कनेक्ट है आर्ट के साथ, कम्युनिटी के साथ एंड द आउटडोर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स, दैट इज द मेन गोल फॉर दिस म्यूरल. एंड दिस म्यूरल इज बींग बिल्ट ऑन द ट्रिनिटी पार्क कंजर्वेंसी बिल्डिंग एट 305 वेस्ट कॉमर्स स्ट्रीट. सो ऑल ऑफ यू हु यू नो आर अराउंड दैट एरिया, जो वहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए तो शायद ये देख रहे होंगे कि ये बड़ा सा काम चल रहा है. फॉर द रेस्ट ऑफ अस जिनको इतना मौका नहीं मिलता उस विसिनिटी में बार बार जाने का, उनके लिए ये आई एम श्योर इट इज़ अ न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू एंड अ गुड वन एक्चुअली. एंड सॉकर एट इट्स कोर इज अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, राइट? और हैरल्ड सिमन्स पार्क जो है इट्स गोइंग टू ब्रिंग Dallas closer to nature and mural ye wala jo hai is also of that vision ki ye art ke saath ek jo connect hoga Dallas ka, ye it will go a long way. Aur ye mural jo hai it is created by international acclaimed artist Ruzart. Inke bare mein main kuch padh rahi thi and it is such an interesting story of this young lady who started painting walls and making murals at the age of 18. She's from Netherlands, ek chote से विलेज में, और वहाँ पे वो मेडिकल स्कूल में जाना उन्होंने शुरू किया. लेकिन कुछ ही महीनों में रियलाइज़ किया कि ऑल्दो डॉक्टर्स का जॉब जो होता है वो इतना गिविंग होता है, एक बड़ा फुलफिलिंग सा जॉब होता है, लेकिन वो आर्ट में, आर्ट से लोगों तक पहुँचना चाहती थी, आर्ट से कनेक्ट करना चाहती थी लोगों को. और इसीलिए शी लेफ्ट व्हाट शी वाज डूइंग एंड शी जस्ट मूव टू सिटी एंड देन ऑन टू द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म ऑल्सो. और रूस आर्ट ये क्रिएट करने वाली है, क्यूरेटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रीट आर्ट फॉर मैनकाइंड एंड लोकल डैलस आर्टिस्ट डैनियल यानेस. तो ये सच में इंतज़ार रहेगा इस म्यूरल का, विच इज़ टेकिंग शेप एज वी स्पीक एंड इट विल बी डन बाई द एंड ऑफ द मंथ.

सिर्फ चार कदम नहीं बल्कि पूरे आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक एटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम आपके साथ रहेगी. इफ़ यू हैव बीन इन अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट या वर्क प्लेस इंजरी है या कार या ट्रक एक्सीडेंट हुआ है जिसके लिए आपको कॉम्पनसेशन चाहिए तो ज़रूर इनके साथ कनेक्ट करें, बिकॉज यू डोंट पे अंटिल यू विन. बेसिकली कॉम्पनसेशन मिलने तक आपका वो साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए गेट इन टच विद देम 4693005046 attorneyomar.com is the website to go.

And you are tuned into Gupshup Gali with me too, ladies and gentlemen. Happy Thursday to all of you who are tuning in just now. Meri shuruaat aaj Phanesia pe ho chuki hai subah 8 baje se. Ji haan, I have been covering for Shabnam ji and I'll do that tomorrow as well. 8 se lekar 12:30 baje tak main hoon aapke saath. Bhai, main umeed kar rahi hoon ki aapko meri company jo hai usme boriyat nahi ho rahi hai kyunki main to thoroughly enjoy kar rahi hoon yaar. I am enjoying this Thursday which has a complete story of its own. Kya hai na ki Monday is all about Monday blues, you know, wo rona dhona, ye weekend khatam hua, wo sari cheeze hamari chalti rehti hai, right? Tuesday aur Wednesday ko hamari na matlab deadlines meet karne ka din hota hai. Bahut sare bojh tale hum log dabe hue hote hain, matlab meetings hain kaam par aur ghar pe kuch chores hain jo khatam karni hai. Ab matlab ek rigor mein aa jate ho aap. But Thursday, ladies and gentlemen, Thursday ka na apna ek alag hi swag hai, isme to koi shak nahi. It is unofficially but globally recognized as Friday Eve. Ye wo din hai jab aapki body na matlab us pe na ek alag sa asar hota hai. Aapki body kaam par nahi, actually aapki atma jo hai ek weekend ka wo already ek jo hai kya lutf lena shuru kar deti hai. And this is the exact day when the tone of your work emails mysteriously starts changing as well. मैं बताती हूँ ना कैसे. Instead of please fix it as soon as possible, इस तरह के जो मेल में आपके कमेंट आता है उसके जगह पे आपको मिलता है let's circle back to the early next week, क्योंकि भाई आपके बॉस भी उस वीकेंड मोड में चिल आउट ऑलरेडी कर रहे हैं. और दोस्तों का भी क्या कहना, जो पूरे हफ्ते बिजी रहते हैं ना, वो थर्सडे आते आते फिर पूछ रहे थे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो वीकेंड को, मिलें क्या, समवॉट लाइक दैट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन. लेट्स सर्कल बैक टू दिस ब्यूटिफुल गॉर्जियस डे. इवन इफ इट इज हॉट, इवन इफ इट इज ह्यूमिड, वील मेक इट वर्थ वाइल राइट हियर फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस इज फन एशिया रेडियो 104.9 FM. बॉस, पता ही नहीं था मुझे कि सिद्धांत चतुर्वेदी इतना अच्छा गा लेते हैं यार. ही इज इनटू म्यूजिक एज वेल. ये बात मेरे आज मेरे सामने नहीं, एक्चुअली दो चार दिन पहले जब मैंने एक और इनका गाना सुना था, वो भी सुनाने वाली हूँ राइट आफ्टर दिस सॉन्ग विच केम 5 years back.

0: Siddhant Chaturvedi, ladies and gentlemen, with this gentleman called Dog Geek. Hopefully, मैं सही pronounce कर रही हूँ. अगर नहीं तो आपके पास number है. You can always correct me. ये उनका stage name है, लेकिन असल नाम देवांश भाटिया. So, देवांश भाटिया जनाब जो है ये मुंबई से हैं और ये tech savvy music producer हैं, song writer हैं, DJ हैं, sound engineer हैं और अपने versatility के लिए जाने जाते हैं. Electronic, pop and Bollywood music के लिए जाने जाते हैं. इन्होंने covers भी बनाए हैं, रीमिक्सेस भी बनाए हैं और ऐसे ओरिजिनल्स भी बनाए हैं. ये जो गाना आपने बाय द वे सुना, इट वाज इन द वॉइस ऑफ सिद्धांत चतुर्वेदी एंड द पोइट्री या द लिरिक्स कह लें, इट वाज रिटन बाय सिद्धांत चतुर्वेदी हिमसेल्फ एंड इट वाज कंपोज बाय देवांश भाटिया उर्फ डॉग गीक, लेडीज एंड जेंटलमैन. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक और गाना आया है. वंस अगेन इट इज सिद्धांत चतुर्वेदी इन हिज मोस्ट कैजुअल एंड वेरी चार्मिंग प्रेजेंस दैट ही हैज इन द सॉन्ग एज वेल. इस गाने का टाइटल है रहना. रहिएगा आप हमारे साथ. हाँ, दिस इज फनीशा रेडियो 104.9 FM. ये है गपशप गली विद मी टू.
1: देखे मैंने ख्वाब सारे

0: साथ चलेंगे रहना करीब.
1: And this is Siddhant Chaturvedi and the Dog Geek, ladies and gentlemen. Unka naya gana jo aaya, aapne abhi abhi suna. Hopefully you enjoyed it. I enjoyed it for the fact also that Siddhant Chaturvedi is in that one. Aur maine bahut enjoy kiya yaar. Wo maine abhi na haal hi mein wo film bhi dekhi unki with Mrinal Thakur yaar. What was the name? Do Diwane Shahar Mein, that film. And it was quite good actually. I don't know kyun it was written off, but I hear that it wasn't written off. Something that I just assumed, ladies and gentlemen. But it is a film that did well at the OTT also. It is doing well at the OTT also. So if you haven't watched this very simple story that it has and wonderful acting by the two, you must watch Do Diwane Shahar Mein. Waise Dhurandhar to aapne dekhi hi hogi. In what might be the absolute craziest display of fan dedication so far in 2026 that we have seen, a group of hardcore gamers just pulled off an impossible thing. उन्होंने क्या किया है, ये जो मैसिव सक्सेसफुल फिल्म है ये धुरंधर, उसको कम्प्लीटली रिक्रिएट किया है इन साइड द वीडियो गेम रोब्लॉक्स. येस, एंड वेन आई से दे रिक्रिएटेड इट, आई डोंट जस्ट मीन ए शॉर्ट ट्रेलर और अ 5-minute ट्रिब्यूट. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर ब्लॉकबस्टर, scene by scene, dialogue by dialogue, they animated and directed the full 3 hours 21 minutes of the movie using blocky Roblox characters. Nahin, agar aapko yakin nahin aata to YouTube pe jaake zarur dekhi, kyunki maine bhi jaake dekha. Main connect nahin kar paayi kyunki Roblox wagaire mein main hoon nahin. I am not into those things, so I wouldn't enjoy it as much. You would if you are into that game. It is absolutely mind-blowing. That's what people are saying. They actually uploaded the full-length video to YouTube and the internet is going crazy over it. Aur wo patience soche, wo editing, wo pure dedication it takes to build a 3.5-hour action movie inside a video game engine is just absolutely next level. जो गेम एडिट है ना, इसने गेम एडिट ट्रेंड को ही एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्ट्रेटोस्फेयर में ये लेकर चला गया है. अब देखिए ना आप, माइनक्राफ्ट या GTA V जैसे गेम्स में शॉर्ट म्यूजिक वीडियोस या मूवी ट्रेलर्स तो हमने बहुत देखा है, इट्स वेरी कॉमन. लेकिन एक पूरी की पूरी फिल्म, फुल लेंथ जो फीचर फिल्म है, उसे एग्जीक्यूट करना, ये एक अलग ही बात थी. तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसा पहली बार हुआ है, दिस क्रेजीनेस फॉर द फिल्म धुरंधर, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो मेरा सवाल brings you this deal wherein you can win from Neon Cactus. One of you can win from Neon Cactus that $20 discount on dine-in. और ये वो जगह जहाँ पे आपको मेक्सिकन फ्यूजन खाना मिलता है, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर उनके खाने पर, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़बी हलाल ऑप्शंस हैं और साथ में वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं. और आपको साथ में बता दूँ कि एम्बियंस भी सुपर कमाल, ठीक है. नाउ दैट बीइंग सेड, लेट मी आस्क यू दिस, कि व्हाट इज दैट वन क्रेजी थिंग दैट यू हैव डन फॉर योर फेवरेट मोस्ट मूवी. देखिए इस लेवल पे क्रेजीनेस तो मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ यार, क्रेजी तो हम भी हुए हैं अपने फिल्म्स पे जो हमें पसंद आई है, राइट. सो टेल मी दैट वन फिल्म दैट यू हैव बीन क्रेजी अबाउट, कि आपने उस क्रेजीनेस में कुछ अलग ही कुछ किया उस फिल्म के लिए. जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब आई थिंक कयामत से कयामत तक रिलीज हुई थी, दैट वॉज द वन फिल्म दैट आई हैव वॉच्ड विथ माई सिस्टर एंड माई फैमिली 4 times एट द थिएटर्स. पुअर पेरेंट्स ऑफ आर्स, वो लोग बड़े स्वीट थे कि हमारे इस क्रेजीनेस को वो उन्होंने साथ दिया. यहाँ तक कि यू नो वी हैड दिस डायलॉग कैसेट ऑफ QSQT, कयामत से कयामत तक. आमिर खान और जूही चावला के साथ बॉन्डिंग ना उस जमाने से है मेरी. तो चलिए इसी बात पे एक गाना सुनाया जाए आपको फ्रॉम द फिल्म कयामत से कयामत तक, और आप मुझे बताएं कि आपने क्या क्रेजी किए हैं अबाउट योर फेवरेट फिल्म जो इतनी पसंद आई आपको और उसके लिए आपने कुछ क्रेजीनेस की हो. 9722355555, दैट्स द नंबर इन द स्टूडियो. इन द मीन टाइम यू नो वॉट, I will ask you to call me after because I'm getting so many calls right now. इसलिए मैं request करना चाहती हूँ कि call करें, लेकिन इस गाने के बाद.

0: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: Ritesh, कभी सोचा है? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
9: यस, अगर

0: प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
1: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
0: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
2: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
3: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Okay, this is a voice that I've recently discovered and I'll tell you how. Shreya Ghoshal ka ek interview dekh rahi thi aur usme unse pucha gaya tha the newer singers, the younger singers that she has been listening into aur jinki awaaz unhe achhi lag rahi hai, jinka style unhe pasand aa raha hai, and that's when Shreya Ghoshal, the goddess herself, spoke about Hansika Parekh. और तो मैंने थोड़ा सा फिर देखा और फिर मैंने उनके गाने सुनना शुरू किया और कितनी मीठी सी आवाज़ है इनकी यार. शी इज़ फ्रॉम अजमेर बैक इन राजस्थान और एक प्रोमिनेंस उनको एक म्यूज़िक वर्ल्ड में मिलने लगा है. शी इज़ संग विथ अरिजीत सिंह, शी हैज़ डन म्यूज़िक विथ अमित त्रिवेदी, तो बड़े बड़े नाम उनके साथ जुड़े हैं. एंड भैया सीख ही सिखाई हैं, क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली हुई है बाकायदा. That's Hansika Parekh, ladies and gentlemen. और ये है गपशप गली with me too, आप लोगों के साथ 12:30 तक मैं हूं ना यहाँ पर. मस्त रहे यार.

How did you like this song? I loved it, and this is the first time ever I'm playing it, despite the fact कि ये गाना बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे थाउजेंड्स नहीं मिलियंस में इस गाने को व्यूज मिल चुके हैं ऑन यूट्यूब. यू आर लिसनिंग टू फनीचर रेडियो 104.9 FM. तो जब जो आपसे शेयर किया जाए ना उस पर ज़रूर यू नो यू कंटिन्यू फॉलोइंग, बिकॉज दीज आर द सिंगर्स, दे आर द फ्यूचर सिंगर्स दैट वी नो, और इनके बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना समझ लें कि हम लता मंगेशकर और आशा जी और रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब और वेरियस अदर लेजेंड्स फ्रॉम यस्टर ईयर्स जैसे बात करते हैं, क्योंकि दीज आर द फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस. तो अगर कोई सिंगर आज के दिन का आपको पसंद आए, स्टार्ट फॉलोइंग देम, स्टार्ट सीइंग देयर वर्क सो दैट दे आर एनकरेज्ड. एंड ये सारे ना इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं और इसीलिए इन पर ध्यान देना थोड़ा सा और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बॉलीवुड में तो जो पॉपुलर है वो स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता, ऑल ओवर इंडिया एंड देन बियॉन्ड इंडिया ऑल्सो. बाकी ये इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं जो कई बार स्ट्रगल करते रह जाते हैं, सो लेट्स गिव देम दैट सपोर्ट दैट दे नीड राइट हियर ऑन फनीचर रेडियो 104.9 FM. और बाकी रही बात आपकी, अगर आपको वो सपोर्ट चाहिए तो वो कदम आप ही को उठाना पड़ेगा. एंड देर इज दिस अमेजिंग इवेंट फॉर ऑल ऑफ यू विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट. आज से लेकर 17th तक ये चलने वाला है. ये 3 दिन का एक जो जर्नी है आपकी, इट विल कनेक्ट यू टू योर इनर सेल्फ, और ये आपके स्ट्रेस को दूर करेगा, ये आपके इमोशनल ब्लॉक्स को क्लियर करेगा, एक क्लैरिटी इन जनरल दैट यू नीड समटाइम्स टू, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक दैट पॉज देयरफॉर. और इसीलिए रजिस्टर करें oshouniversal.org पे जाकर एंड बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग रिट्रीट विच हैज स्टार्टेड टुडे.

आई लव दिस फ्यूजन. ये जो क्लासिकल के साथ एक मॉडर्न बीट का ये जो फ्यूजन है, ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है एक्चुअली. एंड देर आर सो मेनी पायोनियर्स इन दैट वन. एंड शंकर जयकिशन जी हाँ, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किया था विथ बीट्स एंड केडेंस इन हिज एल्बम कॉल्ड रागा जैज स्टाइल. और उसके अलावा उस्ताद विलायत खान, रविशंकर और जाकिर हुसैन जैसे दिग्गज नाम जो हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है टू यू नो फ्यूज इन्फ्यूज दैट मॉडर्न एलिमेंट टू द वेरी क्लासिकल बेस ऑफ म्यूजिक. और इन सब के अलावा बहुत सारे और नाम हैं, और उन नाम को सारे लोगों को तो ये नहीं याद कर सकती हूँ, लेकिन थैंक यू ज़रूर कह सकती हूँ फॉर दैट ब्लेंड दैट दे गॉड, फॉर दैट फ्यूजन म्यूजिक दैट दे गॉड. एंड ये इनोवेटिवनेस ना सिर्फ म्यूजिक की दुनिया के बारे में क्यों कहें, हम इनोवेटिवनेस ले चलते हैं आपको एक मेडिकल की दुनिया में भी. एंड फॉर दैट आई हैव टू टेक यू टू 1796. लेकिन उसके पहले एक और गाना सुन लें और उसके बाद वापस आके बताते हैं क्या हुआ था आज के दिन इन 1796. एक और फ्यूजन सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू.

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ शेयर करने वाली थी आप लोगों के साथ, बस वही शेयर करने चली हूँ क्योंकि आज है 14th of May। लेकिन 14th of May 2026 की नहीं बल्कि 1796 पे लेट की जाने वाली हूँ, वे बैक इन 1796, वे बिफोर मॉडर्न लैब्स एंड फैंसी साइंस। एंड इंग्लिश डॉक्टर जिनका नाम एडवर्ड जेनर, उन्होंने डिसाइड किया कम्प्लीटली समथिंग वेरी वाइल्ड, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीनेशन एज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर स्मॉल पॉक्स, ए डिजीज दैट हैड किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल ओवर द सेंचुरीज। नाउ उस जमाने में स्मॉल पॉक्स जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, ऑफकोर्स वी ऑल नो, और उसका कोई क्योर नहीं था, इसीलिए और डरावना था। हुआ कुछ ऐसे कि डॉक्टर जेनर हु वॉज ए मेडिकल स्टूडेंट देन, उन्होंने अपने विलेज में एक फार्म वर्कर को देखा, मिल्कमेड को देखा कि यू नो वो मिल्कमेड जो है वो उन्हें उसे काउ पॉक्स हुआ था, एंड जिसका नतीजा ये हुआ कि स्मॉल पॉक्स उन्हें लगा ही नहीं, मतलब क्या हुआ कि जिसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत ब्लिस्टर्स तो हुई काउ पॉक्स के वजह से, हल्के पुल्के ब्लिस्टर्स तो हुए लेकिन कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो डॉक्टर जेनर पिक्ड अप एन 8-year-old किड जिनका नाम है जेम्स फिप्स, और वो उनके गार्डनर के बेटे थे, टू टेस्ट आउट ए टोटली क्रेजी थियोरी। सो ऑन दिस डे 1796 ही बेसिकली टुक इन्फेक्टेड पस फ्रॉम मिल्कमेड्स काउपॉक्स ब्लिस्टर्स एंड लिटरली स्क्रैच्ड इट डायरेक्टली इनटू द पुअर किड्स आर्म। नाउ जेम्स को उसी स्पॉट पर एक ब्लिस्टर डेफिनेटली हुआ, कुछ हल्का पुल्का बुखार भी हुआ, बट देन ही वॉज फिट एंड फाइन। देन केम द अल्टीमेट स्कैरी टेस्ट, On July 1st, Jenner inoculated the boy again, but इस बार actual smallpox matter के साथ। और guess what? उस बच्चे को कोई बीमारी develop नहीं हुई, कुछ smallpox वगैरह कुछ नहीं हुआ, cowpox ने उसे completely immune कर दिया था। So this historic moment became the world's very first vaccination, ladies and gentlemen. And 3 years later, Dr. Jenner Edward used the term vaccine for the very first time. और क्या आप जानते हैं कि ये word जो है वो कहाँ से आया है? It is the Latin word for cow, ladies and gentlemen, vacca. That is what is cow known in Latin. इस एक single experiment ने दुनिया भर के doctors को inspire कर दिया था। In the 19th and 20th centuries, scientists followed Jenner's exact model to develop life-saving vaccines for polio, measles, tetanus, hepatitis B, and so many others. So, आगे चलकर ये भी हुआ कि World Health Organization के global vaccination programs ने 1970 में smallpox को पूरी दुनिया से हमेशा के लिए eradicated declare किया। So the next time आपका कुछ अगर routine vaccination या कुछ अगर हो रहा होगा ना, तो Dr. Jenner Edward को, Edward Jenner उनका पूरा नाम जो है Edward Jenner, और वो जो 8 साल के जो उनका जो था वो जिस पर उन्होंने try किया था, James Phipps, और साथ में उस काउ जिसका नाम मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन इन तीनों को जरूर एक बार याद करें दिल से। हाँ, दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

क्या ख्याल है आपका इस गाने के बारे में? इफ यू हैव एंजॉयड इट, खन खन, दैट्स द नेम ऑफ द ट्रैक. और कनिष्क सेठ एट द हेल्म ऑफ इट. यस, इट इज कविता सेठ, सन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कुछ उभरते हुए नाम है जो लाने की कोशिश मैंने की सेगमेंट में. होपफुली यू एंजॉयड इट. टाइम टू टाइम आई कीप डूइंग इट. जब मुझे कुछ मिलता है मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करती हूँ. तो बदले में ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके पास कुछ ऐसे गाने हो तो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा. 972-235-5555. क्योंकि ये ना एक अपार समुंदर है जहाँ पर मतलब इतने सारे आर्टिस्ट अभी भी जानना और उनको सुनना बाकी है. तो इट विल बी सो फैंटास्टिक इफ़ यू कीप सेंडिंग योर चॉइस ऑफ सॉन्ग्स ऑल्सो फ्रॉम द करंट टाइम्स, फ्रॉम दिस वेरी टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशंस दैट आर कमिंग. गपशप गली विथ मीठू, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लिनिक जाना नॉट सो एंजॉयबल थिंग, राइट? लेकिन अगर मैं कहूँ कि मई 16th को आप बिल्कुल एक होल न्यू हेल्थ केयर एक्सपीरियंस की तरफ जाने वाले हो एट लुनॉक्सी मेडिकल टेक्सस प्राइमरी एंड अर्जेंट केयर्स ग्रैंड रिबन कटिंग फ्रॉम 2 PM टू 4 PM इन फ्रिस्को. तो बेसिकली आप कस्टम लाटे बार इंजॉय करें और साथ में इंजॉय करें नथिंग बंट केक, विच आई एब्सोल्युटली लव बाय द वे, और साथ में आइसक्रीम, वो भी मुझे बड़ा पसंद है. तो मैं सोच रही हूँ चक्कर लगाने की तो बनती है. एंड यू कैन एक्चुअली चेक आउट देयर मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक एंड देन डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू एंड टॉक टू द स्टाफ देयर, टॉक टू द पीपल देयर, सी हाउ यू फील अबाउट द प्लेस, बिकॉज इट इज नेवर टू लेट टू चेंज योर हेल्थ केयर provider and your destination for healthcare. So grand opening raffle bhi jo aapke liye hai jisme aap jeet sakte hain Medspa prizes. This is Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way Suite 205 in Frisco, ladies and gentlemen. And that's where you need to be for this very special event. Once again, thank you very much for tuning in. You are listening to Gapshap Gali with me too.

0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. This was from a film that released on this day in the year 2004. And this film was Lakeer, and that is what we will continue on. Lekin hum aapke liye hamesha jo ye professional help lekar aate hain, tips and advices lekar aate hain. Usi ke chalte Zeno Credit Repair ke taraf se hamare liye hamare saath jude hain Mr. Deep right now, and it is my pleasure completely to host him in order to find out more about this thing called credit score, jis jo ek terrifying number hota hai kai logon ke liye. Agar credit score aapki kharab ho jaye to duniya jahan ki cheeze aapke liye mushkil ho jati hain, wo chahe wo gaadi khareedne se lekar ghar khareedne tak par uska asar padta hai. To let's find out the basic mistakes that people do, how they can use the service of Zeno Credit Repair and get their scores better. Toll free number inka 800-400-9468. Their website is zenocreditrepair.com. Aur filhal mere saath hai Mr. Deep, and he'll be telling us a lot more in detail about Zeno Credit Repair. Thank you so much for finding time for us, Mr. Deep. Bahut bahut shukriya. Kaise hain aap?
1: जी, थैंक्स मी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए कैसे हैं जी?
0: बिल्कुल अच्छी हूँ. और क्रेडिट स्कोर को कैसे सही किया जा सकता है, कई लोगों के ये जो सवाल हैं उस पर थोड़ा हम आज रोशनी डालते हैं कि क्या है ना कि सर, जैसे हमारे US में क्या है ना कि हर चीज़ हमें फास्ट चाहिए होती है. US में क्या, दुनिया भर में ये आजकल मंत्र है कि सब चीज़ फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट क्रेडिट स्कोर भी चाहिए होता है. तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि किसी का क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो what kind of time frame that they can expect ki jab unka sahi ho sakta hai, what is the usual time frame that people have to wait for?
1: Ji bilkul, jaise aapne fast food ki baat kari to wo to avoid hi karna chahiye, theek hai ji, but credit scores ko fast karne mein aapki hum definitely help karenge.
0: Ji,
1: jaise hum apni health ko health conscious hai kafi log aajkal, right? To wo apna khana peena bahut नाप तोल कर खा रहे हैं ना. तो ऐसे जो क्रेडिट स्कोर्स हैं, तो इसकी तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान था पहले, पर अब लोगों को पता, दे आर मच अवेयर भी क्रेडिट स्कोर्स का उनकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट है,
0: राइट? जी.
1: तो अगर आप अब जस्ट आप घर लेना है, गाड़ी लेनी है, रीफाइनेंस कराना है, राइट? तो आपको अच्छे क्रेडिट स्कोर की जरूरत है, राइट? अगर आपके आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना, क्या खाया, ये मैटर नहीं करता. जब आप लोन अप्लाई करते हो आपके स्कोर्स कितने हैं ये मैटर करता है,
0: राइट?
1: क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको लोन सैंक्शन हो जाता है. अगर अच्छे स्कोर्स हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा.
0: जी.
1: अगर आपके लो क्रेडिट स्कोर्स हैं, डेफिनेटली आपको लोन तो सैंक्शन हो जाएगा, बट यू हैव टू पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट,
0: राइट? राइट.
1: तो जैसे आपने टाइम फ्रेम की बात करी, तो इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस. इसमें क्लाइंट को पेशेंस रखना पड़ेगा. और दूसरी बात, उसकी रिपोर्ट में कितनी नेगेटिविटीज है, कौन कौन सी चीज है जिसके ऊपर काम करना है. पर एवरेज आउट की बात करें, 45 टू 60 डेज में क्लाइंट्स को अपनी रिपोर्ट में चेंजेस नजर आना शुरू हो जाता है, और उसके जो स्कोर है वो बूस्ट अप होने दिख जाते हैं. हाँ, हमारे पहले स्कोर जितने थे अब इतने हो गए हैं, और हमारी 10-12 नेगेटिव एंट्रीज से उसमें 5-6 निकल गई, और हमारे स्कोर बूस्ट हो गए हैं, और क्रेडिट स्कोर ठीक होना शुरू हो गया.
0: सो दैट इज़ द थिंग, मतलब जल्दबाजी का काम नहीं है, ये पेशेंस रखना ही पड़ेगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी. लेकिन डेफिनेटली 30-45 डेज में, जैसे कि आपने कहा कि उनको फर्क नजर आने लगेगा विथ Zeno Credit Repair. सो वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, 800-400-9468 इज द टोल फ्री नंबर टू गेट इन टच विद मिस्टर दीप एंड हिज टीम. और zenocreditrepair.com इनकी वेबसाइट है. जाने से पहले आपसे ना ये भी पूछना चाहती हूँ, वो दो तीन गलतियाँ क्या होती है, कॉमन गलतियाँ क्या होती हैं जो लोग अक्सर करते हैं, अनजाने में करते हैं, अबाउट क्रेडिट स्कोर्स, जिसकी वजह से उनका जो है क्रेडिट स्कोर अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है.
1: जी, डेफिनेटली आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं, इट्स वेरी हेक्टिक, राइट? आप काम पर जा रहे हो, आप 12-12 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हो.
0: हाँ जी.
1: तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग भूल जाते हैं अपनी पेमेंट्स को ऑटो सेटअप करने पे, राइट?
0: हाँ जी.
1: तो वो अपने दिमाग में कितनी चीजें रखेंगे, मॉर्गेज की पेमेंट जानी है, इंश्योरेंस पे करनी है, रेंटल है, सब कुछ है ना,
0: राइट?
1: तो मैं तो ये जब भी हमें कोई कॉल करता, हम सबसे पहले उनको ये बोलते हैं, यू हैव टू सेट अप ऑल योर ऑन ऑटो पे, राइट, ऑटो सेटअप करो इतनी हमारी जो लाइफ इतनी हेक्टिक है उसमें आप भूल सकते हो,
0: राइट,
1: एज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम रोबोट तो है नहीं ना. अगर एक भी मिस पेमेंट हो गया आपकी रिपोर्ट के ऊपर, आपने पेमेंट को लेट कर दिया, तो वो 30-40 पॉइंट्स आपके क्रेडिट इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा. तो कई बार मैं आपको बताऊंगा भी, कई बार हमें जो क्लाइंट्स कॉल करते हैं तो जस्ट विद द लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस ओवर द फोन तो उनका मसला हल हो जाता है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल साफ सुथरी होती है. बस उनको यही नहीं पता होता है, दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस भी गोइंग फॉरवर्ड अपने क्रेडिट को कैसे वो मेंटेन रख सकते हैं. तो मैं तो आपके जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये बोलूंगा, जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारे सर्टिफाइड क्रेडिट स्पेशलिस्ट हैं, राइट, आप उनके साथ वन टू वन कॉल करो, बुक योर फ्री कंसल्टेशन विद अस, तो हम आपको बता देंगे ओवर द फोन. अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा फिर भी आपको एक गाइड करेंगे कि आपको उस प्रोग्राम को अपने क्रेडिट स्कोर्स को और क्रेडिट हिस्ट्री को कैसे मेंटेन कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड.
0: जी एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन. जो भी आपके साथ कनेक्ट करते हैं उनको आगे का रास्ता भी उनका आसान कर सकते हैं आप. सो या थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग ऑन एयर एंड गिविंग अस दीज टिप्स एंड एडवाइसेस. आपके साथ बातचीत फिर अगले हफ्ते हम करेंगे, और मैं अपने लिसनर्स को फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, द टोल फ्री नंबर इट इज 800-400-9468. एक बार फोन जरूर करें, जितनी भी हेजिटेशंस है ना आपकी हट जाएंगी दिमाग से, बिकॉज वी हैव स्पोकन अबाउट इट अर्लियर ऑल्सो मिस्टर दीप, दैट इट इज़ ऑल वेरी कॉन्फिडेंशियल. तो किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि उनकी कुछ क्रेडिट स्कोर का कुछ यू नो कुछ भी डेटा कुछ लीक होगा या कुछ, वो सारी चिंताएं बिल्कुल बिना करके.
1: बिल्कुल बिल्कुल, पर एक चीज लोगों में होती है भी, हमारे पैसे ना खराब हो जाए, तो हम उसकी भी सिक्योरिटी ले रहे हैं. यू हैव यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, राइट,
0: राइट.
1: तो नो अपफ्रंट फी, कोई अपफ्रंट फी नहीं चार्ज करेंगे. तो यू सो कोई भी आपका लिसनर जो सुन रहा है तो उनको वरी करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम, जैसे आपने पहले बताया.
0: जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू नेक्स्ट टाइम अगेन. एंड फॉर माई लिसनर्स अगेन, xenocreditrepair.com इज द वेबसाइट. Thank you, Jim.
1: Thank you very much for having me here. Thank you.
0: Absolutely my pleasure, sir. And it is Fun Asia Radio 104.9 FM. Gapshap Gali with Me Too continues right here until 12:30.

Yash Chopra ki film, his directorial, which came in the year 1993 and was a blockbuster hit, ladies and gentlemen, starring Shah Rukh Khan, Sunny Deol and of course Juhi Chawla in this one. Lekin 1993 mein Aamir Khan ke saath ek aur film aayi thi jo Yash Chopra ne hi direct ki thi. It was in 1993 on this day, ladies and gentlemen, jab ek multi-starrer film release hui thi Yash Saab ki. Lekin chal nahi paayi thi at the box office. It didn't work at all, actually. And Yash Chopra's Midas touch didn't help at all. Aap jante hain ki, you know, Saif Ali Khan bhi shayad is film mein... Wait a minute, let me go back on this one, all right? Is film mein, jo hai Parampara, is film ka naam hai. Aur is film mein, Saif Ali Khan, Aamir Khan, ye saare log the, and many other actors, I'll tell you all the names. But what you need to know is, Saif Ali Khan ke liye, wo ek Midas touch hai, Aamir Khan ka hona. It was Dil Chahta Hai, his turning point in his career, right? Saif Ali Khan ke liye. And apparently, Aamir Khan ne kaha tha Saif Ali Khan ko to work in this one. And also, in Parampara, it was about Aamir Khan that Saif Ali Khan wanted to do this film very keenly. Aur bhale us time pe wo Midas touch kaam nahi kar paya, lekin Dil Chahta Hai ke liye it was a magic film in his career, and that's Saif Ali Khan, ladies and gentlemen. Now going to the multi-star cast list that this film had, Parampara had, and isme Sunil Dutt, Vinod Khanna, Neelam, Raveena Tandon, Ashwini Bhave, Anupam Kher, Ramya Krishna, bahut sare log the yaar, lekin phir bhi ye film chal nahi payi thi at the box office. Aaj ke din 14th of May that it released in the year 1993. Let's get you that song playing. लेकिन हमारी परंपरा क्या है कि हम अपने शो पे ना सिर्फ आपको गाने सुनवाते हैं लेकिन आपके साथ बात करते हैं अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट आर लोकल बिजनेसेस एंड ऑफ कोर्स इवेंट्स. तो एक खास इवेंट जो आप लोगों के लिए आ रहा है, दिस इज दैट यू नो रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस समर किक ऑफ इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन जून 3rd एंड जून 4th फ्रॉम 9 AM टू 5 PM. और ये ना इतना बेहतरीन होने वाला है फॉर ऑल स्टोर ओनर्स की क्या ही कहा जाए. क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, फ्री गिफ्ट्स ऑल डे लॉन्ग दैट यू आर गोइंग टू गेट बिटवीन 9 AM टू 5 PM ऑन जून 3rd एंड जून 4th. तो यकीनन यू वुड वांट टू नो कि ये हो कहाँ रहा है. इफ़ यू ऑलरेडी हैवंट विजिटेड रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस, आप लोगों के लिए वो एड्रेस फॉर योर GPS इज 11029 हैरी हाइंस बुलेवार्ड, बिल्डिंग ए इन डैलस, रवीज इम्पोर्ट Warehouse. Now that being said, should we dive into that Parampara gana?

You are listening to Furniture Radio 104.9 FM. एक और फिल्म पे लेकर जाने वाली हूँ, एक और फिल्म के गाने पर लेकर जाने वाली हूँ, which released on this day, 14th of May. साल था 1979. आपको बताना है फिल्म का नाम, क्योंकि अगर आप बता देते हैं तो आपको फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड मिलने वाला है फॉर दैट देसी स्टाइल पिज्जा दैट यू कैन गेट देयर. एंड बियॉन्ड दैट देर इज प्लेंटी अदर थिंग्स दैट यू कैन एंजॉय एट फन पिज्जा किचन. लेडीज एंड जेंटलमैन, जरूर कॉल करें 972-235-5555. तो ये कौन सी फिल्म है? ये वो फिल्म है जिसके लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि यू नो 70s का वो दौर, अगर इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, यू नो बॉलीवुड में बड़ा प्रेडिक्टेबल एक कहानी का एक पाथ हुआ करता था, राइट? कि ऑडियंस को ये पता होता था कि आगे क्या होने वाला है, यू नो. लेकिन उसके बावजूद भी देर वर फ्यू मूवीज दैट वर बिल्कुल हटके. उनमें से कुछ नाम अगर मैं लूँ, कि पिया का घर, रजनीगंधा, चिच्चोर, छोटी सी बात, स्वामी, दिल लगी, खट्टा मीठा, ये कुछ ऐसी सिंपलिस्टिक, अनकॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कमाल की हार्ट वार्मिंग मूवीज थी. और ये सारी मूवीज बासुचार्य जी ने यू नो बनाई थी, विच यू कुड रीविजिट एनी टाइम, यू नो. आज भी वो फिल्म इतनी अच्छी लगती है हमें, नहीं, बट नॉट दिस वन एज मच, क्योंकि ये फिल्म उतनी चल नहीं पाई थी एट द बॉक्स ऑफिस डिस्पाइट ऑफ बिग नेम्स इन द फिल्म. इस फिल्म की कहानी भी काफ़ी सिंपल थी, अनकॉम्प्लिकेटेड थी. अमीर लड़की, गरीब लड़का, फिर लड़की के फादर का रेजिस्टेंस, वो सारी वो जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती थी फिल्मों में, वो सारा ट्रोप था इसमें. तो आप समझ सकते हैं, इस स्टीरियोटिपिकल कहानी को बासु चैटर्जी की डायरेक्टोरियल मैजिक की ज़रूरत थी, क्योंकि एक्टर्स तो मैंने जैसे कि कहा ना कमाल के थे, लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग था, विच इज़ वाई इट डिडंट डू दैट ग्रेट एट बॉक्स ऑफिस. बट ओवर द ईयर्स इट इज़ एन एल्बम विच इज़ एब्सोल्यूटली अ कल्ट क्लासिक. और उसमें से ये गाना मैं प्ले करने वाली हूँ. आपको बताना है इस फिल्म का नाम, जो एक ऐसी फिल्म से है विच रिलीज ऑन दिस डे 14th May 1979. फिल्म का नाम क्या है? यू प्लेइंग फॉर फन पिज्जा किचन गिव अवे. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो.

0: एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल द टाइम आई हैव. लेकिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं, यानी कि ये शो वाइंड अप करूं, उसके पहले ये बता दूं कि फिल्म का नाम है मंजिल, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू वाज, स्टारिंग अमिताभ बच्चन एंड मौसमी चैटर्जी, लेडीज एंड जेंटलमैन. और आर डी बर्मन का म्यूजिक, उफ, किशोर कुमार साहब की आवाज इस गाने के लिए, उफ उफ डबल उफ. और यस, आई डू वॉन्ट टू क्रेडिट भानु फॉर गेसिंग द नेम ऑफ द फिल्म, एब्सोल्युटली करेक्ट. और इसीलिए फन पिज्जा किचन की तरफ से इनको मिला है ये तोहफा, ये गिव अवे. सो कंग्रेचुलेशंस, एंजॉय द देसी स्टाइल पिज्जाज देयर एंड लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक इट. एंड दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर द डे, लेकिन एक रिमाइंडर के साथ कि कल सुबह 8 बजे मैं वापस यहाँ पे आने वाली हूँ, कवरिंग फॉर शबनम जी टुमारो एज वेल. तो मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे. सुनते रहे.
1: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
2: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
3: Dallas, what if going to a clinic actually felt enjoyable? On May 16, step into a whole new healthcare experience at Lunoxy Medical, Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. Sip from a custom latte bar, enjoy nothing bun cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting MedSpa prizes. Visit Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205. In Frisco, Lunoxy Medical, modern care, warm experience.
4: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
5: Excuse me, it's called being loyal.
4: It's called being predictable.
5: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
5: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
5: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
5: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
6: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
7: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
6: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
7: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
8: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
9: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
10: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट. आर यू

0: Self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
1: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
0: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
2: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे? मेले की रौनक, गरमा गरम जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई, हैगड़ पार्क, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।

A very good afternoon, friends, and a very happy Thursday. अब आप पूछेंगे कि Thursday के बारे में happy क्या होता है जी? अरे होता है ना, weekend आ जाएगा कल, बस यूं आ गया. अब तो समझो, मुझे पता है कि आधे लोग तो ऑफिस में बैठे बैठे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, कॉलेजेस में भी सोच रहे हैं कि हाँ फाइनली यस. और कल का जो है आधा दिन तो यूं ही बीत जाता है बस एक्साइटमेंट में. और ऑनेस्टली अगर हम बात करें तो पूरे वीक का जो स्ट्रेस है ना, उसको सर्वाइव करने के बाद हम डिजर्व करते हैं एक सॉलिड बिंज वॉच सेशन, चाय, स्नैक्स, पॉपकॉर्न, इन सब के साथ. तो आज का जो शो है वो है वीकेंड वॉचलिस्ट स्पेशल, जहां मैं आपके लिए लेके आई हूं लेटेस्ट मूवीज, सीरीज, थ्रिलर्स, कॉमेडी, ड्रामास और वो सारे हिडन जेम्स जो आपके वीकेंड को और मजेदार बना देंगे. वैसे मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप इस वीकेंड कौन से बिंज वॉच का वेट कर रहे हैं, कौन से थ्रिलर का वेट कर रहे हैं, क्या है ऐसा जो आप यू नो बस वेट कर रहे हैं कि वीकेंड आ जाए और मैं फटाफट उसको देख सकूं. मुझे बताइए @972235555 पे.

दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वीकेंड वॉच लिस्ट स्पेशल के बारे में, और आज जो लिस्ट में सबसे ऊपर है वो है धुरंधर 2। जी हाँ, धुरंधर 2 रिलीज हो रहा है ऑन OTT ऑन 15 मई ऑन नेटफ्लिक्स। और ये जो वर्जन है ना धुरंधर 2 का, वो इट इज़ बिट डिफरेंट थिएटर वाले से। इसका जो है रॉ एंड अनदेखा वर्जन रिलीज हो रहा है नेटफ्लिक्स पे। तो अगर आपने थिएटर में धुरंधर 2 को देखना मिस किया है तो अब चांस है कि आप फुल एक्शन धमाका को कैच करने का। वैसे मैं आप लोगों से एक और बात जानना चाहूंगी कि जब इस तरीके का वर्जन आता है, क्योंकि बहुत लोग जो है ब्लॉकबस्टर मूवी है एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, और बहुत लोगों ने ऑलरेडी थिएटर में धुरंधर 2 देख रखी है, तो जब वो OTT पे आती है तो उसके लिए थोड़ा सा ना टिंज ऐड करते हैं कि अनदेखा न्यू वर्जन। तो मैं जनता से पूछना चाहूंगी, ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि हाउ एक्साइटेड दे आर। उनको लगता है कि रॉ और अनदेखा वर्जन एक्साइटिंग होता है कि अच्छा मेरा दो तीन सीन मेरे को देखना है तो भी मैं दोबारा से दो तीन घंटे की मूवी देख लूंगी, या फिर आपको लगता है कि अरे बाबा स्टोरी तो ऑलरेडी पता ही है तो फिर दोबारा क्या देखना है। तो आप जो है कौन से वाले ऑडियंस है ये मैं जानना चाहूंगी। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 9722355555 पे।

डैलस, अगर मैं आपसे कहूं कि यू नो क्लिनिक जाना एक्चुअली इंजॉयबल फील हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? अरे आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप खुद जाइए मई 16 को एट लनॉक्सी मेडिकल, विच इज टेक्सास प्राइमरी एंड अर्जेंट केयर्स ग्रैंड रिबन ओपनिंग जो है यहाँ पे हो रहा है इन फ्रिस्को फ्रॉम 2 PM to 4 PM, और आप जाइए उनका ग्रैंड ओपनिंग एंजॉय कीजिए. और सिर्फ ओपनिंग या हेल्थ केयर सर्विसेज ही नहीं, उनके पास कस्टम लाटे बार भी है जहाँ पे आप नथिंग बन केक्स, आइसक्रीम और डिफरेंट फूड आइटम्स इंजॉय कर सकते हैं वाइल ऑफकोर्स टूरिंग देयर मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक. तो और इसके अलावा भी आप जो है उनका ग्रैंड ओपनिंग राफल जीत सकते हैं, और बहुत चांसेस है कि आपको यू नो एक्साइटिंग मेडस्पा प्राइजेस मिल जाए. तो देर किस बात की है, अभी जाइए और खुद वेबसाइट पे उनके सर्च कीजिए. वो है लनॉक्सी मेडिकल एंड इनका लोकेशन है 9191 कैसर वे सूट 205 इन फ्रिस्को. तो बिल्कुल जाइए, और यू नो हाँ क्लिनिक जाना भी इंजॉयबल हो सकता है गाइस.

दोस्तों, आजकल मेरे दिमाग में बस दो तीन मेन मेन गाने बज रहे हैं, जो कि है अरे रे रे पगल फिकर नॉट ओ बलमा सुबहान अल्लाह। हाँ जी, अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये है हमारे प्यारे चहेते श्री रामचंद्र। और अगर आप भी उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं और उनका कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस इस गिव अवे राउंड का आंसर देना है और आपको मिल सकता है उनका लाइव कॉन्सर्ट अटेंड करने का मौका। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और एक्साइटेड हो जाइए और एकदम फोन पे तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए। तो द क्वेश्चन इज कि श्री रामचंद्र कौन से शो से पॉपुलर हुए थे, और सिर्फ शो का नाम नहीं बताना है, सीजन का नाम भी बताना है टू विन दिस एक्साइटिंग हैम्पर। अगर आपको इसका जवाब पता है कि श्री रामचंद्र कौन से शो से पॉपुलर हुए थे, कौन सा सीजन उन्होंने जीता था, तो आप कॉल कीजिए 972-235-5555 पे और आप जीत सकते हैं मौका उनके लाइव कॉन्सर्ट अटेंड करने का। वेटिंग फॉर योर कॉल।

गाइज, हमने आपसे श्री रामचंद्र के लाइव कॉन्सर्ट गिव अवे का क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन से शो से पॉपुलर हुए थे और एग्जैक्टली किस सीजन से पॉपुलर हुए थे, और जवाब है इंडियन आइडल सीजन 5। हमें बहुत सारे आंसर्स आए और जो जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है वो है राजेश पेड्डी जी। थैंक यू सो मच राजेश, आप एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप जीत चुके हैं श्री रामचंद्र गिव अवे ऑफ एन अनफॉरगेट फुल म्यूजिकल नाइट विथ हिम। आई मीन प्लीज ये मौका यूटिलाइज कीजिए, और ये हो रहा है ऑन May 15th एट 8 PM एट संबुका प्लानो में। एंड श्री रामचंद्र जो है वो पहली बार आए हैं नॉर्थ अमेरिका में, और फन एशिया रेडियो जो है उनको प्रेजेंट कर रहा है, और आपको मौका मिल रहा है सोलफुल म्यूजिक, लाइव एनर्जी और इतना एकदम अप क्लोज परफॉर्मेंस देखने का विथ द इंडियन आइडल हिमसेल्फ। अगर आप गिव अवे नहीं भी जीत पाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मौका है टिकट्स खरीदने का। आप कॉल कर सकते हैं 201-884-4254 पे, या फिर 703-732-1777 पे। तो श्री रामचंद्र जी लाइव हैं और आपको फिर इंतजार किस बात का है, जाइए और एंजॉय कीजिए, टिकट्स खरीदिए, गो, आई विल बी वेटिंग देयर फॉर यू।

जी, अगर आप भी सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह लगना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में, जो कि लोकेटेड है इन फ्रिस्को एट प्रेस्टन रोड, और ये है आपका गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेसेस, और हर उस स्पेशल मोमेंट में ना स्पार्कल लाने के लिए मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड के कलेक्शन जो है बहुत ही यूनिक है। इनकी सुपीरियर क्वालिटी है और टाइमलेस डिजाइंस हैं, फ्रॉम क्लासिक सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स। ये जो डिजाइन्स है ना, और ये जो इनका डायमंड कलेक्शन है, गोल्ड कलेक्शन है, ये परफेक्ट है एंगेजमेंट्स के लिए, एनिवर्सरी के लिए, या फिर कुछ भी एक छोटे बड़े मोमेंट के लिए जहां पे आप प्यार सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और वैसे तो ईद भी काफी नजदीक है, तो अगर आप चांद जैसा चमकना चाहते हैं तो मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में जाना तो बनता है जी।

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: होम वैल्यूज इन कॉलिन एंड डेंटन काउंटी हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली, व्हिच मींस अप्रेजल्स हैव गॉन अप, व्हिच मींस अ लॉट ऑफ होमओनर्स आर ओवरपेइंग राइट नाउ and don't know it. Bezit reviews your appraisal, builds the case, fights it. Nothing upfront. May 15th deadline. Bezit.co.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
7: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
6: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
1: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA Loan Experts, Faisla Clarity ke saath.
8: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
8: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
9: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

दोस्तों हम बात कर रहे हैं वीकेंड वॉच लिस्ट स्पेशल की और हमने आपको बताया कि धुरंधर 2 रिलीज हो रही है ऑन नेटफ्लिक्स आई थिंक टुडे और टुमारो, आई एम नॉट वेरी श्योर, इन्हीं दो दिनों में। और इसके अलावा कर्तव्य जो है वो भी रिलीज हो रहा है ऑन नेटफ्लिक्स। ये इसमें जो है सैफ अली खान जी हैं और ये है एक क्राइम ड्रामा विथ इमोशनल डेप्थ एंड इंटेंस सस्पेंस। मतलब सैफ अली खान का जो सीरियस इंटेंस रोल है ना, ये आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है, हर कोई उनके सीन्स की बात कर रहा है। तो अगर आपको सैफ अली खान या इंटेंस ड्रामा पसंद है तो बिल्कुल आप कर्तव्य देख सकते हैं, या फिर अगर आप ये कर्तव्य या धुरंधर टाइप वॉयलेंस को अवॉइड करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ कुछ यू नो हैप्पी सा गुड गुड फीलिंग वाला कुछ देखना चाहते हैं, तो एक एनिमेटेड मूवी भी आई है जो काफी इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है स्वैप्ड और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो लोग जो है अनएक्सपेक्टेडली अपनी आइडेंटिटी स्वैप कर लेते हैं। एक और चीज बता दूं, ये एक एनिमेटेड मूवी है और मैंने इसको कल ही देखी है, मुझे तो बड़ी पसंद आई, आई होप आपको या आपके बच्चों को बेहद पसंद आएगी। इसमें जो है ये स्वैपिंग की वजह से थोड़ा केओस होता है, नए नए सीक्रेट्स पता चलते हैं और थोड़ा बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन का भी गेम है। स्वैप जो है हमें याद दिलाती है कि द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो और ये मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी के साथ यू नो अपनी आइडेंटिटी स्वैप करने का मौका मिले, फर्ज करें फॉर 24 आवर्स, तो वो कौन होगा? मतलब कोई सेलिब्रिटी है या आपके घर का ही कोई पर्सन हो सकता है? बताइए बताइए।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: हाँ जी, अच्छे अच्छे गानों के साथ अच्छे अच्छे खाने की भी बात कर सकते हैं। और जहां भी अच्छे खाने की बात होती है ना, तो मुझे तो पेज 3 ईटरी ही याद आता है, जो कि है एट हब 121। और पेज 3 ईटरी वो जगह है जहां पे इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स में मॉडर्न फ्लेवर, और फिर इस फ्यूजन से बनता है कबाब, चाट, फ्यूजन बाइट्स, मॉकटेल्स और क्या कुछ नहीं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस विच इज़ इंस्टाग्रामेबल एंड अलॉन्ग विद इट इज़ हैविंग अ वाइब्रेंट वाइब फॉर ब्रंच, लंच एंड इवन डिनर, और ये है परफेक्ट फॉर फूडीज, फॉर टेकिंग ऑन डेट्स एंड फॉर ऑल द फ्लेवर चेजर्स आउट देयर जस्ट लाइक मी। अगर आपको इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं page3eatery.com पे और देखिए वहां पर क्या क्या मिल रहा है, और आपको जरूर एक बार मौका तो दीजिए, यहां पे जाके खाइए, आपको जरूर मजा आएगा।

दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारा गिव अवे राउंड का, और इसके पहले कि मैं आपसे गिव अवे राउंड का क्वेश्चन पूछूं, मैं बताना चाहती हूं आपको कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में, जिसके साथ आप जो है अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को एक पावरफुल इनकम स्ट्रीम में तब्दील कर सकते हैं। ये डिजाइन करते हैं यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज आपके बॉटम लाइन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये होम ओनर्स को भी हेल्प करते हैं ताकि वो अपने मॉर्टगेजेस जो है ना 10 साल या उससे भी कम समय में क्लोज कर सके, खत्म कर सके। तो फिर आपको अब किस बात का इंतजार है, अभी आपको कॉल करना चाहिए जेम्स को एट 321-888-7345। आई विल रिपीट द नंबर फॉर यू, 321-888-7345, या फिर आप विजिट कर सकते हैं connectingamericafinancials.com, और जिससे कि आप जो है अपने डेली एक्सपेंसेस को इनकम में बदल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने गिव अवे राउंड की, जहां की आपको जीतने पे मिल सकता है एक एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम देसी मंडी। गाइस, बस एक छोटा सा रूल और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फन एशिया का कोई भी जो है हैम्पर जीता हो, कोई भी गिव अवे जीता हो लास्ट एक मंथ में, तो प्लीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे, बिकॉज हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए। गाइज, सो गाइज, आई होप आप सब रिडल के लिए रेडी हो। आज का क्वेश्चन है, वो क्या है जो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है लेकिन हिलता नहीं है, मूव नहीं होता। रिपीट करती हूँ, वो क्या है जो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है लेकिन हिलता नहीं है, मतलब कि मूव नहीं करता। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कॉल कीजिए एट 972-235-5555 पे। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि आपको जवाब पता है या नहीं।

थैंक यू सो मच गाइस फॉर पार्टिसिपेटिंग. बहुत सारे कॉल्स आए और जो सबसे पहले जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है वो है संतोष जी. कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष जी, आपको मिलता है देसी मंडी की तरफ से एक्साइटिंग ग्रॉसरी गिफ्ट हैम्पर. यू कैन गो देयर एंड कलेक्ट योर गिफ्ट हैम्पर. इट्स लोकेटेड इन लुइसविल. और जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो क्या है जो ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है लेकिन मूव नहीं होता, मतलब हिलता नहीं है. और इसका जो सही जवाब है वो है स्टेयर्स या फिर स्टेयरकेस. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी हु गेव द आंसर. कुछ लोगों ने टेम्परेचर और सेंसेक्स भी बताया विच मेड सेंस, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास हमारे विनर्स थे बाय द टाइम वी गॉट योर आंसर. सो या कीप ट्राइंग नेक्स्ट टाइम गाइज.

जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कैसे कटेगा मेरा पल पल आप लोगों के बिना, क्योंकि मेरे जाने का वक्त आ चुका है और अब जो है नेक्स्ट 3 डेज में आप लोगों से बातें नहीं कर पाऊंगी, मतलब पूरे वीकेंड। अब मैं आऊंगी अगले मंडे को सेम टाइम 12:30 से 2:30 बजे, तो हम एक दूसरे से खूब सारी बातें करेंगे। और जाने से पहले मैं आपको सीमा मेहता लॉ ऑफिसेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप हैं H1B पे, F1 पे, L1 पे या किसी भी दूसरे नॉन इमिग्रेंट वीजा पे और आप प्लान कर रहे हैं अपना US परमानेंट रेसिडेंसी, तो द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता कैन रियली हेल्प यू, क्योंकि वो और जो उनकी एक्सपीरियंस टीम है वो स्पेशलाइज करती है इमिग्रेशन लॉ में, इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीजास, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजास, PERM लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। अगर आपको इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम के बारे में, तो आप ईमेल कर सकते हैं इनको info@seemamehtalawfirm.com। आई रिपीट इट फॉर यू, info@seemamehtalawfirm.com। और द लॉ ऑफिसेस ऑफ सीमा मेहता कैन रियली हेल्प यू टुवर्ड्स योर पाथ ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी इन USA। तो ये हमारा सफर आज इतना ही था, हम फिर मिलेंगे अगले मंडे। टिल देन धमा चौकड़ी मजाइए, बहुत कुछ हो रहा है डैलस में इस वीकेंड पे, इंक्लूडिंग द लाइव कॉन्सर्ट ऑफ श्री रामचंद्र। मतलब आई एम तो वेरी एक्साइटेड, आई होप टू सी यू गाइज देयर।

0: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
1: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
2: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
3: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
4: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab. Tumne fir card use kiya?
5: Karna pada. Fees due thi aur already late ho chuke payments mein.
4: Par maine abhi check kiya. Hamara credit स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself. Free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
11: Sab kuch saaf rakh sakte ho.
12: Par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में,
13: क्योंकि ये कौन बोला?
12: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
4: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Dallas, what if going to a clinic actually felt enjoyable?

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fanisia Radio. Sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting with us this afternoon. 2:30 baje se 5 baje tak, yani ke 2:30 PM to 4:05 PM actually. I will be here with you with your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Aap bhi mere saath rehte hain. 972-235-5555 is the number to the studio. Your calls are always, always welcome. Once again, advance mein aapko thank you bolti hoon kyunki jaise hi maine ye segment shuru करना है मुझे बहुत सारी कॉल्स हमेशा आती हैं. यू आर सच डेडिकेटेड एंड सच ब्यूटीफुल लिसनर्स. तो जी आज है थर्सडे और आप जानते हैं कि थर्सडेज में आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण का खासा है. द फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज फूड जंक्शन. लेके आती हूं आपके लिए फूड जंक्शन, एक नया शहर, एक नया मुल्क और उसके खाने, कुछ उनकी स्पेशलिटीज, कुछ देसी खाने. और जो बाकी थर्सडेज ऑफ द मंथ होते हैं उनमें आपकी पुरजोर फरमाइश पर आता है वो 90s का बॉलीवुड, 90s के गाने. साढ़े चार तक आपके लिए प्ले करूंगी. सो आप अगर कुछ गाना सुनना चाहती हैं, देखिए ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है लेकिन मैं रिकमेंडेशन जरूर ले रही हूं. अगर मैं प्ले कर पाई तो आई विल डेफिनेटली, अगर नहीं कर पाई तो एडवांस में माजरत. वेलकम टू वो 90s का बॉलीवुड राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. चैनल बिल्कुल ठीक है आपका, चेंज मत कीजिए, सुनते जाइए.

पापा कहते हैं फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, वो 90s का बॉलीवुड सुन रहे हैं आप योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में. और जी कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए लाइंड अप हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आपका आज खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा, या वैसे कभी वीकेंड पे नहीं करता, या एनी डे कोई मेहमान आ रहे हैं आपके घर में और आपको बाहर से खाना लाना है और आप ये चाहते हैं कि खाना बिल्कुल घर जैसा हो, तो वो सिचुएशन जो है उसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ. ये है जी तंदूरी फ्लेम, ये ही सोल्यूशन है आपका. गार्लैंड में लोकेटेड है ये, बिल्कुल घर जैसा खाना. ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि सिजलिंग तंदूरी प्लाटर्स हैं, रिच करीज हैं उनके पास, कबाब्स हैं, फ्रेश नान है, मतलब सब कुछ आपको बेहतरीन मिलेगा, उम्दा जायके का मिलेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज बिल्कुल घर जैसा. और अगर आप यू नो कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपको घर के खाने की याद आ रही है, तो देन तंदूरी फ्लेम इज द प्लेस फॉर यू गाइज. गो एंड चेक इट आउट, इट इज लोकेटेड इन गार्लैंड. एंड बिल्कुल यू नो सेलिब्रेट कीजिए, घर लाइए, केटर कीजिए, जो भी आपका दिल करता है कीजिए. सो दिस इज वो 90s का बॉलीवुड एंड दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज टेकन. एक ये मूवी आई थी हमेशा नाम से, री इनकारनेशन किसी स्टोरी थी और काजोल और सैफ अली खान होते हैं और यू नो फिर दे आर इन लव एंड देन देर इज अ विलन एंड वो मार देता है उन्हें और फिर वो दोबारा जन्म लेते हैं. और वो कहानी गाने बड़े खूबसूरत थे इस फिल्म के, चेक इट आउट.

फिल्म हमेशा से सुन रहे थे आप ये गाना काजोल और सैफ अली खान वर द लीड रोल्स, जबकि आदित्य पंचोली ने परफॉर्म किया था इसमें विलन का रोल. और आपको बताऊं जी 1997 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. और कुछ दिलचस्प फन फैक्ट्स इसके ये हैं, या फैक्ट इसका ये है कि जो आदित्य पंचोली का रोल था, जो कि मेन विलन है इस फिल्म के, जो कि मतलब दो तीन बार, एक बार तो हीरो हीरोइन को मार देते हैं, दूसरी बार भी पूरी कोशिश होती है उनकी, वो रोल पहले जैकी श्रॉफ को दिया गया था. शुरू में जैकी श्रॉफ को उस रोल में कास्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर आई थिंक या तो उनको कोई डेट्स का इशू था या कुछ और, तो जैकी श्रॉफ ने इस रोल में इसको में काम करने से इनकार कर दिया. एंड देन दैट रोल वेंट टू आदित्य पंचोली. और संजय कपूर को सैफ अली खान की भूमिका यानी कि राजा का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन आदित्य पंचोली के साथ जो है वो संजय कपूर का कुछ मसला चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं करना चाहता, तो फिर सैफ अली खान को ये रोल दिया गया था. तो ये मजे के कुछ किस्से आपके लिए फिल्म हमेशा से लेकर आई थी. एंड नाउ दिस नेक्स्ट सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी अफलातून.

फिल्म अफलातून से सुन रहे थे आप ये गाना. वंस अगेन 1997 में अक्षय कुमार और उर्मिला मातोंडकर पे पिक्चराइज्ड ये मूवी. दिस इज द ओनली मूवी जिसमें अक्षय कुमार और उर्मिला हमें एक साथ नजर आए. और इस मूवी में अक्षय कुमार ने एक विलेनस रोल भी किया था. एंड कहते हैं कि दैट रोल वॉज इन रॉकी उसका नाम था. दैट रोल वॉज रिपोर्टेडली इंस्पायर्ड बाय जैक निकल्सन परफॉर्मेंस इन बैटमैन. तो फिल्म अफलातून से एक छोटा सा किस्सा ये भी. और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी, ग्रोसरी शॉपिंग अगर आपने करनी है, देसी ग्रोसरी शॉपिंग अगर आपने करनी है और आप नहीं चाहते कि मुख्तलिफ दुकानों पर जाएं कि कहीं कुछ अच्छा मिलता है कहीं कुछ सस्ता मिलता है, तो सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा. और वो छत कौन सी है जी? देसी मंडी. देसी मंडी द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास. और साथ ही साथ ये कि ना तो आपको सारे अपने ग्रोसरी देसी ग्रोसरी रिक्वायरमेंट्स आपके पूरे होंगे, पूजा का बहुत बड़ा सेक्शन है वहां पे. अगर आपकी पूजा एक्सेसरीज आपने खरीदनी है तो दिस इज डेफिनेटली द प्लेस फॉर यू. और उसी के साथ जब आप शॉपिंग करके थक जाएं तो फिर खाना पीना करने का तो दिल करता ही है. तो रेस्टोरेंट भी है देसी मंडी के अंदर जहां पे बेहतरीन खाना मिलता है. और आजकल तो डील्स भी लगी हुई है, बाय वन गेट वन फ्री. मंडे और वेंसडे को अगर आप जाएंगे तो 5 बजे शाम से 9 बजे रात तक बाय वन गेट वन लगा हुआ है बिरयानी नूडल्स एंड फ्राइड राइस पे. जबकि ट्यूजडे और थर्सडे को बाय वन गेट वन फ्री लगा हुआ है डोसास एंड चाट्स पे. 5 PM to 9 PM नो मिक्स एंड मैचेस अलाउड, सम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. बट देसी मंडी इज द प्लेस फॉर यू टू गो शॉप टिल योर यू नो टिल यू गेट टायर्ड एंड ईट टिल यू आर डन विद इट. दिस इज देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल.

0: दिल तो पागल है फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, बॉलीवुड म्यूजिकल रोमांस दिल तो पागल है, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान एज वेल एज करिश्मा कपूर. करिश्मा कपूर ने जीता नेशनल अवार्ड आफ्टर 5 अदर एक्ट्रेसेस रिजेक्टेड दिस रोल जो कि उन्होंने निशा का किया था. शाहिद कपूर ने डेब्यू किया था एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर इस फिल्म में, एंड जो है ये एक बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म थी. बहुत सारे करियर्स बनाए इस फिल्म ने. बने रहिए मेरे साथ, we are heading on to a short break. I'll see you right after the break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: अरे सुनना, आज ऑफिस से आते हुए मैंने फ्रिस्को में एक नया स्टोर देखा.
4: कौन सा?
3: कैरेट लेन.
4: वेट, व्हाट? कैरेट लेन इंडिया वाला?
3: हाँ वही.
4: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
3: देखा, ढूंढ के दिया ना.
5: इंडियाज मोस्ट लव्ड एवरीडे ज्वेलरी ब्रांड नाउ इन फ्रिस्को. लाइटवेट रियल डायमंड्स मेड फॉर एवरीडे. कैरेट लेन, अ टाटा प्रोडक्ट.
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
7: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
8: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
9: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
10: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
9: के टू ड्राइव मतलब?
10: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
9: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
10: 100%
11: नहीं हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस.
13: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
14: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8-6823464611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
15: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी.
16: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपने कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहाँ हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
17: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
18: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. याद है आपको, जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे, मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई हैगड़ पार्क लालो, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरी के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, फन एशिया 104.9 FM।

जी हाँ, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। सुन रहे हैं आप दीवाना फिल्म से ये गाना, वो 90s का बॉलीवुड लेकर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में हाजिर हूँ। और दीवाना फिल्म जी 1992 में रिलीज हुई। दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1992, जिसमें नदीम श्रवण का स्टेलर म्यूजिक था और शाहरुख खान, ऋषि कपूर और दिव्या भारती। वैसे तो मेन लीड जो हैं वो इस फिल्म के ऋषि कपूर थे, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ सितारे बने हुए राज करने के लिए होते हैं। तो इस फिल्म में पहली बार शाहरुख खान नजर आए, एंड आई थिंक आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिम सिंस द दीवाना टाइम। सो ऑल्दो दिस वाज दीवाना उनकी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म कंसिडर नहीं की जाती, क्योंकि उससे पहले उन्होंने शायद वो दिल आशना है, शायद उसके अंदर वो उनकी पहली फिल्म कंसिडर की जाती है। बट रिलीज जो है वो दीवाना पहले हो गई और दिल आशना बाद में हुई, इसीलिए दीवाना को ही उनकी पहली फिल्म माना जाता है, स्पेशली हमारे जैसे फैंस के लिए जो बने थे दीवाना से उनके फैंस। ये हुई आपके लिए एक छोटा सा किस्सा दीवाना फिल्म का। और अब आगे बढ़ते हुए आपके लिए गाना लगा रही हूँ, संग बाय सोनू निगम, दिस ब्यूटिफुल नंबर इज एक दिन कहीं हम तुम मिले और तीसरा कोई ना हो।

0: फूल और कांटे से सुन रहे थे आप ये गाना 1991 की आइकॉनिक रोमांस मूवी. अजय देवगन का करियर बना इस मूवी से, मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट हुई और जो है बहुत ज़बरदस्त तगड़ा चैलेंज था इस मूवी को, क्योंकि लम्हे मूवी भी उन्हीं दिनों रिलीज हुई थी और बन गई ये जोड़ी बहुत ही कमाल की, अजय देवगन और मधु. और अब इस गाने के साथ बढ़ रहे हैं हम आगे बढ़ते हुए ब्रेक की तरफ. दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी बाजीगर और ये गाना हमें याद दिलाया दिव्या ने. दिव्या थैंक यू सो मच. दिस इज विनोद राठौड़. छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो गाइस बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में मत रहिए, जो दिल में है उसे कह दीजिए, वक्त निकल जाएगा तो हाथ मलते रह जाएंगे.
1: छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं.

0: Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: मामू देखो क्या हो गया।
6: ओ क्या हो गया?
5: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
6: ओए जर्मन का कमाल है।
5: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
6: ओए नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
7: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
8: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
4: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn.
4: समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर।
9: Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड, रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ आवर न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
14: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
13: रोज का सेम प्रॉब्लम।
15: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकीनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
16: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग।
17: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
18: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
19: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
20: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

दिल है के मानता नहीं से सुन रहे थे आप ये गाना। और जो है रिक्वेस्ट तो वैसे आप रिकमेंडेशन महेश साहब की मैं प्ले कर रही थी। और दिल है के मानता नहीं के बारे में क्या कहा जाए, जो कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात नहीं की हुई। एक कल्ट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसे महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया था। वैसे मैं आपको बताऊं कि 1956 में एक बॉलीवुड ही मूवी आई थी जिसका नाम था चोरी चोरी। ये उसका रीमेक थी। और चोरी चोरी किसका रीमेक थी, वो एक हॉलीवुड क्लासिक इट हैपेंड वन नाइट का रीमेक थी जो कि 1934 में आई थी। तो ये एक आपको चेन बता रही थी इंस्पिरेशन की, 1934 की मूवी से इंस्पायर हुई ये मूवी। देखिए मूवी अगर अच्छी हो, स्टोरी अगर अच्छी हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पुरानी है, क्योंकि कहानी जो है अगर अच्छी हो, रोमांस हो उसके अंदर अफेक्शन हो, तो फिर वो हर दौर के लोगों के दिल को टच करती है। ये था दिल है कि मानता नहीं का एक किस्सा। और अब जो ये गाना मैं प्ले करने लगी हूँ वो है जी हिरानी साहब कर रहे हैं अपनी बेगम शीरी साहब साहिबा को डेडिकेट। तो 90s का ये खूबसूरत गाना, शीरी जी दिस इज गोइंग आउट टू यू फ्रॉम योर लवली हस्बैंड।

0: And now we are entering into our conversation corner with Sunehri Kiran, jo aapke liye aaya hai is waqt, yani ke kaun leke aaya hai? Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen ki taraf se ye $10 ka gift card aapke liye lekar aayi hu for your participation and giving me some interesting discussion points right here on your Sunehri Kiran's conversation corner. To ji, Fun Pizza Kitchen to aapko pata hi hai ke pizza khane ka man ho aur kuch desi twist ke saath khane ka man ho to Fun Pizza Kitchen se behtar jagah bilkul nahi mil sakti. Aap veg lover hain ya non-veg lover hain, they have something for your taste. To zarur Fun Pizza Kitchen visit kijiye aur unki website check out karna mat bhuliye, funpizzakitchen.com. Menu dekhiye, unki locations dekhiye aur dekhiye wo kya kya aapko offer kar rahe hain. Aur ye $10 ka gift card agar aap jeet gaye to ji, you have to go to Fun Pizza Kitchen Frisco location to pick up that $10 card. Agar aapne pichle mahine mein ye jeeta hai to please ek mahine ka intezar kar lijiye. You can only be a winner once. You can participate in the conversation corner, but aap mujhe khud hi bata dijiye ki main mahine pichle mahine ke andar andar Fanisha ke kisi show pe jeet chuka hu, to mera naam mat daliyega, but your participation is much welcome. Acha ji, as always, abhi jab 90s ke Bollywood ki baat ho rahi hai to aap mujhe ye bataiye, abhi mujhe ek badi pyari call aayi aur unhone mujhe, Sachin ne mujhe bataya ki dekhiye aap 90s ka Bollywood kar rahi hai, to ekdam se ek gana mere zehen mein aaya jisko unhone mujhe bataya aur main unke liye thodi der mein use play bhi karungi. Aur unka gana, agar Sachin aap chahte hain to dobara call karke bata dijiye, is waqt aapke zehen mein 90 ki dehai ka kaun sa gana chal raha hai, 90s ka kaun sa gana chal raha hai, call karke mujhe bataiye. Ek line gungun sakte hain aap, wo line bas ek hi honi chahiye. ठीक है, 90s का वो कौन सा गाना है जो आपके जहन में चल रहा है? मेरे तो जहन में बहुत सारे चल रहे हैं, वो सारे ही आपके लिए प्ले कर रही हूँ. 972-235-5555 is the number to the studio. रेडियो की आवाज कम कर दें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: हाय, माय नेम इज शिवानी.
0: हाय शिवानी, हाउ आर यू डूइंग?
1: आई एम डूइंग गुड, थैंक यू.
0: वेरी गुड. और बताइए शिवानी, इस वक्त आपके जहन में कौन सा 90s का गाना चल रहा है? सिंगल लाइन फॉर अस इफ यू वांट.
1: प्यार तो होना ही था.
0: ओके, यू वांट टू सिंग?
1: प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था.
0: लवली लवली शिवानी, ये गाना आपके जहन में क्यों आया, अचानक से आया, म्यूजिक की वजह से आया, क्या क्या वजह हुई?
1: Suddenly, when you asked the question, this song came to my mind.
0: Okay, lovely. Thank you, Shivani, for your call. Sunte rahiye. I'm going to announce the winner in a bit. Fun Asia Radio, you're live on air. What's your name?
2: Richa.
0: Hi, Richa. What song are you thinking right now?
2: Ekash ke hum hosh mein ab aane na paaye, bas nagme tere pyaar ke
0: बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच रिचा फॉर शेयरिंग. आकाश के हम एंड आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. थैंक यू सो मच. फाइनेंशियल रेडियो, यू लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: या दिस दीपक.
0: दीपक, क्या चल रहा है आपके जहन में 90s का?
3: चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली.
0: लवली. यू वांट टू सिंग इट फॉर अस और दैट्स इट?
3: या आई कैन सिंग. चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली.
0: बिल्कुल सही, मुझे क्या पता किधर वो चली. थैंक यू सो मच दीपक. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
4: या हाय, आई एम ज्योति.
0: हाय ज्योति, बताइए व्हाट इज प्लेइंग इन योर हेड? 90s, सिंगल लाइन.
4: ये काली काली आंखें.
0: I love the way you did tururu tururu. ठीक है. All right, Jyoti, please keep listening. I will announce the winner in a bit. Fun Asia Radio, you're live in air. What is your name?
5: Hello, Kiran ji, how are you? Sohail here.
0: Thank you, sir. मैं ठीक हूँ सोहेल साहब. बताइए, what is playing in your head from the 90s? Single line.
5: देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार.
0: बिल्कुल सही, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार. लवली सोहेल, थैंक यू फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, मैं विनर अनाउंस करती हूँ. फनीशा, ये जो टंग टड़ा टंग हुई है बड़ी मजे की हुई. फनीशा रेडियो, अपना नाम बताइए.
6: यस हाय, दिस इज ममता ठक्कर.
0: हाय ममता, बताइए व्हाट इज प्लेइंग इन योर हेड? सिंगल लाइन.
6: घूंघट की आड़ से दिल भर का
0: दीदार अधूरा लगता है
6: जी जी
0: बिल्कुल सही, आपने बड़ा प्यारा गाना याद दिलाया ममता. सुनते रहिए, मैं अभी फिर अनाउंस करती हूँ इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम? नाम बताइए अपना.
7: तुझे देखा तो दीप
0: जी, दीप बताइए, गाइए गाइए.
7: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम.
0: बिल्कुल सही.
7: यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम.
0: बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच दीप. सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनीशा, ऑलराइट जी, लेट्स स्टॉप दिस सेगमेंट हियर. एक गाना प्ले करते हैं जो के चल रहा था. देखिए, मैंने सचिन के जहन में, जिसकी वजह से मैंने ये सेगमेंट शुरू किया हमारा. दिस इज चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर.

You're tuned into 104.9 FM Furniture Radio. Afternoon drive time with Suneri Kiran. Miss रहे हैं आप वो 90s का Bollywood. बस almost वो segment खत्म हो चुका है, लेकिन break पे जाते हुए conversation corner आपके लिए लेके आई थी Fun Pizza Kitchen की तरफ से $10 win करने का आपके पास मौका था, और आप तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं नौरीन अलवानी. नौरीन कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. बस लास्ट कॉलर थी आप और अभी हम आपका गाना सुन ही रहे थे कि जो है हमारा टाइम खत्म हो गया, लेकिन आप तमाम लोगों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत शुक्रिया. फनीशा इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज लेकर आता है, मेरे लिए ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर बहुत अहम और मायने रखता है बिकॉज आई गेट दिस चांस ऑफ टॉकिंग टू यू एंड making that one-on-one connection with you. Kuch aur bhi bahut mazey ki cheezein aapke liye conversation corner mein leke aaungi. That is a promise. This is Suneri Kiran. Afternoon drive time sun rahe hain aap. Aur is 90s ke gaane ke saath hum kar rahe hain is segment ka ikhtitam. Wo 90s ka Bollywood next Thursday. Dobara leke aaungi.

तो क्या आप तैयार हैं? What if going to clinic actually felt enjoyable? जी हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये. On May 16th, which is day after tomorrow, step into a whole new healthcare experience at Lenoxy Medical. Texas Primary and Urgent Care's grand ribbon cutting ceremony हो रही है जी, from 2 PM to 4 PM in Frisco. आप आइए, अटेंड कीजिए इस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी को. सिप फ्रॉम अ कस्टम लाटे बार, एंजॉय नथिंग बट केक्स, आइसक्रीम्स एंड सो मच मोर, एंड अलोंग विद दैट टूर देयर मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक. और साथ ही साथ यू विल हैव अ चांस ऑफ एंटरिंग द ग्रैंड ओपनिंग रैफल फॉर अ चांस टू विन एक्साइटिंग मेड स्पा प्राइजेस. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू नॉट फॉरगेट टू विजिट देम, देयर ग्रैंड रिबन कटिंग सेरेमनी, 2 PM टू 4 PM ऑन 16th of May. They are located, this is Lenoxy Medical, located at 9191 Kaiser Way, Suite 205. That is Frisco.

जी हाँ जी, क्या आप रेडी हैं एक अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल इवनिंग के लिए? बताने लगी हूँ आपको कौन आ रहे हैं डालस में. इंडियन आइडल विनर श्री रामचंद्र विल बी हेयर लाइव फॉर एन एक्सक्लूसिव क्लब एडिशन कॉन्सर्ट. पहली बार नॉर्थ अमेरिका आ रहे हैं श्री रामचंद्र. और मैं, मुझे याद है, मैं इंडियन आइडल वो देखा करती थी जिसमें ही वॉज एज अ कंटेस्टेंट, एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल इंडियन आइडल यू नो जर्नी दैट वॉज. दिस इवेंट इज प्रेजेंटेड बाय फन एशिया रेडियो और ये स्पेक्टेकुलर इवनिंग हो रही है May 15th को, यानी ये कल फ्राइडे 8 बजे शाम संबुका प्लेनो में आपके लिए ये इवेंट आ रहा है. एक्सपीरियंस, आइए एक्सपीरियंस कीजिए सोलफुल म्यूजिक, श्री राम की मीठी और खूबसूरत आवाज, लाइव एनर्जी एंड एन अप क्लोज परफॉर्मेंस विद श्री राम लाइक यू हैव नेवर एवर सीन बिफोर. टिकट्स आपके लिए अवेलेबल हैं और स्पॉन्सरशिप्स और टिकट्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं. ये आपको दो नंबर दे रही हूँ, इन दोनों में से कोई एक पे कॉल कीजिए, कोई एक ना उठाए तो दूसरे पे कीजिए. 201-884-4254 201-884-4254 पे कॉल कीजिए. आपको टिकट्स चाहिए, स्पॉन्सरशिप की कोई आपकी क्वेश्चंस हैं, कोई और सवाल है आपका, द अदर नंबर इज 703-732-1777. तो जी, श्री रामचंद्र लाइव आ रहे हैं डालस में ओनली एट संबुका प्लेनो, हैपनिंग टुमारो विच इज May 15th 8 PM ऑनवर्ड्स. डू नॉट मिस इट. तो श्री रामचंद्र की बात हो रही है तो उन्होंने कुछ बड़े ही प्राइवेट खूबसूरत प्राइवेट गाने गाए हैं जो मैं आपके लिए उनमें से एक प्ले कर रही हूँ. दिस इज कितने भी तू कर ले सितम.

जी हाँ जी, श्री राम का कॉन्सर्ट हो रहा है, जरूर आइए, अटेंड कीजिए। ही इज एन अमेजिंग अमेजिंग सिंगर। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ। विद दिस सॉन्ग वी विल एंटर आवर ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर आपके लिए NRI वेल्थ के साथ डिस्कशन लाइंड अप है, और साथ ही साथ वेदर, ट्रैफिक, करेंसी, गोल्ड प्राइस, एवरीथिंग इज लाइंड अप फॉर यू। बने रहिए मेरे साथ, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद यू। दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण।

0: taken from the movie Sultan. सुन रहे थे आप ये गाना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फिल्म सुल्तान, मुझे बहुत पसंद आई थी, बड़ा मज़ा आता है. मेरे ख्याल है मैंने इस मूवी को कई बार देखा है और उतना ही इन्जॉय करती हूँ हर बार इस फिल्म को देखते हुए. इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइंड अप फॉर यू. स्टे ट्यून्ड, दिस इज फनीशर रेडियो आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
5: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
4: K2 ड्राइव मतलब?
5: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
4: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
5: 100%
6: नई हो या पुरानी,

And it is time now to connect you with the weather update. जी हाँ, बताऊँ आपको कि क्या चल रहा है सिटी ऑफ मेकिनी में. आप अपने अपने शहर के हिसाब से एक बार वेदर जरूर देख लीजिएगा. थर्सडे मे द 14th 4:42 PM इन द स्टूडियो. एंड इस वक्त मेकिनी में है जी 89 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 90 राइट नाउ. मोस्टली सनी रहा आज का दिन, हाईज अराउंड 90s तक रहे, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर. इन द इवनिंग देन बिकमिंग पार्टली क्लाउडी, लोज होंगे अपर 60s तक. पोलन आज का 8.2 है जी, विच इज ऑफ कोर्स मीडियम हाई. ग्रास एंड ओक इज व्हाट इज बॉदरिंग. तो अगर आप पोलन से परेशान रहते हैं तो इट इज टाइम टू टेक योर रेमेडीज. यूवी इंडेक्स इज 9 टुडे, विच इज ऑफ कोर्स हाई. इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ वॉक, शामिल दिन लंबे हो गए हैं तो शाम में बंदे का दिल करता है बाहर निकलने का. सो प्लीज मेक श्योर यू हैव योर सनस्क्रीन हैंडी, कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड. सनराइज आज का हुआ 6:27 सुबह, 6:27 AM यानी. और आज का सनसेट होगा 8:18 यानी कि 8:18 PM. और इसी के साथ कल के बारे में भी आपको बताते चलें. फ्राइडे कल May 15th, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे May 15th, कल दिन रहेगा पार्टली सनी विद हाईज इन द अपर 80s, जबकि शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी और लोज जो हैं वो अराउंड 70s तक होने वाले हैं. सो ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल डे टुमारो एज वेल. दिस वेदर फोरकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

right, जी, और अब वक्त आ गया है आपको करेंसी अपडेट देने का कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो आज है जी थर्सडे मे द 14th 4:47 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.85 पे जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.74 विद रिस्पेक्ट टू वन यूएस डॉलर. इंडियन रुपी 95.72 पे ट्रेड कर रहा है जबकि नेपाली रुपी इज ट्रेडिंग एट 153.23. पाकिस्तानी रुपी 278.57 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर जबकि बांग्लादेशी टका 122.75 पे स्टैंड कर रहा है. इस गाने के उस पार मैं आपको बताऊंगी गोल्ड प्राइस अपडेट. बने रहिए मेरे साथ.

जी हाँ, आप सुन रहे थे ये गाना, और खूबसूरत गाना था जी, धड़क टू से प्ले कर रही थी आपके लिए। और गोल्ड प्राइस अपडेट के साथ हाजिर हूँ। और क्या चल रहा है गोल्ड प्राइस में? थर्सडे मे द 14th 4:51 PM एंड अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग, इस वक्त गोल्ड प्राइस पर आउंस है जी $4,650.84, जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत इस वक्त है $149.53। कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में $1.51 की कमी देखने को मिली, जबकि 1 आउंस सोने की कीमत में $46.95 की कमी देखने को मिली। बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण।

जोश बरार की आवाज़ में सुन रहे थे। ये मेरा लेटेस्ट मनपसंद गाना। और अब बस जी 5 मिनट रह गए हैं मेरे और आपके, आपसे विदा लेते हुए ट्रैफिक की अपडेट आपको देती चलूँ। ट्रैफिक में 2 इंसिडेंट्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं। वन इज़ दैट IH 30 टूवर्ड्स मोटली ड्राइव ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 1 लेन इज़ ब्लॉक्ड। द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज़ रिपोर्टेड हाई। अभी कोई 10-15 मिनट पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, और आप जानते हैं कि ट्रैफिक आवर में एक लेन भी अगर ब्लॉक हो जाए तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम सा फील होने लगता है सड़कों के ऊपर। सो प्लीज़ बी विजिलेंट। दिस इज़ एट IH 30 टूवर्ड्स मोटली ड्राइव ईस्ट बाउंड। देर इज़ अनदर कोलिजन दैट इज़ रिपोर्टेड एट 6:35 टूवर्ड्स डालस नॉर्थ टोलवे ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 2 लेन्स आर ब्लॉक्ड, कॉजिंग अ लॉट ऑफ बैकअप एट दिस स्पॉट। अभी ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। द सिवेरिटी इज़ रिपोर्टेड एक्सट्रीमली हाई, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट वेन यू आर रीचिंग एट this spot. But that's pretty much all that I have for you where your roads or traffic is concerned right now in DFW. And with that, I am going to say my byes to you. Kal milungi aapse ek bar phir. And kal to hamesha hi special hota hai, bacha party. Thank God it's Friday. Me and you together, 3 p.m. to 4:30 p.m. I will be here taking your calls live. Vaise I will be here, guys, 2:30 to 5 p.m. Lekin bachon ke saath 3 se 4:30 baje kids junction leke aati hoon, jisme hamari phone lines bajti hain non-stop. To call kar रहिए और सुनते रहिए अपनी पसंद के गाने। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू टुमारो। यू हैव अ लवली लवली रेस्ट ऑफ योर इवनिंग।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Arey, sunna. Aaj office se aate hue maine Frisco mein ek naya store dekha.
7: Kaun sa?
6: Carrot Lane.
7: Wait, what? Carrot Lane? India wala?
6: हाँ वही.
7: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
6: देखा, ढूंढ के दिया ना.
8: India's most loved everyday jewelry brand, now in Frisco. Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carrot Lane, a Tata product.
9: Tune सुनते ही brand click कर गया ना, just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
10: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
13: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
14: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
13: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
14: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
13: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे.
14: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
13: नंबर बोल जल्दी.
14: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
15: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
16: सब कुछ साफ रख सकते हो,
17: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
18: क्योंकि ये कौन बोला?
17: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
19: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
20: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
21: प्लान या होप?
20: मतलब?
21: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
20: ओके, तो मेरा वाला होप है.
21: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
20: क्यों?
21: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
8: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
22: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
23: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
24: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
25: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी.
0: जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
24: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
1: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: वेलकम लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 5 PM एंड ये यूजुअली वक्त होता है मार्विन दास का बिंदा बिंदास. सिंस ही इज ऑन अ हॉलिडे, आई एम योर होस्ट पावल भाटिया कवरिंग इन फॉर हिम एंड आई विल बी हियर टिल 7 PM. विद दैट चलो स्टार्ट किया जाए विद अ बैंग. मैंने कहा था कि आज मैं एक और हीरो को कवर करूँगी, तो आज कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. यही रहिए, एक सरप्राइज एलिमेंट आने वाला है, तो आप कहीं जाइएगा मत. ये सरप्राइज एलिमेंट आपको बहुत, जिसे कहते हैं ना, मज़ा आएगा. इट्स एन इंटरव्यू विद समवन हुज़ वेरी वेरी स्पेशल एंड आई एम जस्ट गोना गिव यू दैट मच हिंट. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे राइट हियर, स्टे एब्सोल्युटली टाइट ऑन योर व्हील्स एंड देन कीप ड्राइविंग सेफली. इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस इन योर होम्स, देन यू कैन रियली इन्जॉय टू विद इन द पैरामीटर्स ऑफ योर होम्स. और इफ़ यू आर आउट एंड अबाउट, देन शॉपिंग को थोड़ा होल्ड करके ये सरप्राइज एलिमेंट आप ज़रूर 5:20 के ब्रेक के बाद आपको ये सरप्राइज एलिमेंट मिलने वाला है. विद दैट चलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज का शो. क्योंकि बात हीरोज़ की हो रही थी, तो क्यों ना मैं एक ये पर्टिकुलर गाना, आजकल यू नो हु इज़ रियली रियली पॉपुलर एंड यू नो दैट, आई मीन मोर देन मी, आई थिंक, आई मीन आई ऑब्वियसली नो इट, बट देन ऑल द फैंस ऑफ रणबीर सिंह, दे नो दैट ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज गाइज हु इज़ टच वुड गोइंग वेरी वेरी हाई विद द सक्सेस ऑफ धुरंधर एंड देन सुरेंदर टू बी. तो ये गाना मैं आप लोगों के लिए अपना टाइम आएगा से प्ले करने वाली हूँ. गली बॉय से लिया गया ये गाना, जिसमें रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट वर देयर. एंड इफ़ यू हैवन सीन इट, ही प्लेज अ रियल लाइफ रैपर एंड ही डज सच एन अमेजिंग जॉब. एंड ये गाना आपको बहुत अच्छा लगेगा, इन्जॉय.
1: उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े, बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लावा फटके बाहर आंदे.

0: And now, listeners, it's time for an interview. This is, our client is SBA loan expert. And I would like to welcome Shahid Punjwani ji. Aapka bahut bahut swagat hai. Yahan Thursday and Friday live interview pe aap hamesha aate hain through SBA loan experts. So, kaafi log apna business start karna ya franchise lena chahte hain. Lekin sabse bada sawal hota hai funding ka. To main aapse aaj yahi puchna chahti hoon ki फोन लाइन पर कि हम आप हमारे साथ हैं और आप क्या बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को अबाउट एसबीए लोन जो आप एक्सपर्ट हैं तो आप क्या बताना चाहेंगे कि अबाउट बिजनेस परचेज फ्रेंचाइज स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स ऑप्शंस किस तरह ले सकते हैं
1: सो आई वुड एक्चुअली हम हमेशा यू राइट बिजनेस के बारे में बात करते हैं किसी को बिजनेस खरीदना है फ्रेंचाइज खरीदनी है बिजनेस स्टार्ट करना है वी ऑलवेज वी आर हियर टू हेल्प देम गेट द लोन विथ एज लो एज 10% डाउन जनरली जब कोई बिजनेस खरीद रहा है और मैं हमेशा एक ये एग्जांपल देता हूँ नंबर्स यूज करके कि अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट $500,000 है तो आपको 10% के आसपास डाउन देना है 50,000 और रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी फाइनेंस्ड अगर फ्रेंचाइज है तो फ्रेंचाइजर की फीस आ गई ट्रांसफर फीस आ गई और अगर आप फ्रेंचाइज नहीं है तो फिर क्लोजिंग कॉस्ट वगैरह है जो भी वो सारा इस लोन में ऐड हो जाता है और जनरली 10% की रेंज हम हमेशा देते हैं बट आज एक और चीज में ऐड करना चाहूंगा लेटली व्हाट वी हैव बीन डूइंग इज वी आर एडिंग वर्किंग कैपिटल टू द लोन व्हाट दैट मींस इज आपके 5 लाख के प्रोजेक्ट में आपको 10% डाउन देना है $50,000 हो गया और बाकी का पैसा फाइनेंस हो गया बट एट द सेम टाइम एट द क्लोजिंग वी विल गिव यू अनदर $50,000 एज वर्किंग कैपिटल सो व्हाट हैपेंस इज जो आपने डाउन दिया था वो पैसा आपको वापस आ गया एंड यू एंडेड अप बाइंग द बिजनेस विद जीरो डाउन तो आपके आउट ऑफ पॉकेट कुछ भी नहीं हो गया मेनी टाइम्स बिजनेस बायर्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के माइंड में यही होता है कि कम से कम पैसे में और लोएस्ट में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट में कैसे हम बिजनेस खरीदे सो इफ यू आर इन द मार्केट ट्राइंग टू बाय अ बिजनेस बाय अ फ्रेंचाइज बाय रेंटल प्रॉपर्टी व्हाटएवर इन द मार्केट यू आर फॉर कॉलर्स नो ऑब्लिगेशन कंसल्टेशन वन ऑन वन एंड विल ट्राई टू फाइंड अ वे आपका अगर कंसर्न डाउन पेमेंट है देन विल स्ट्रक्चर इट इन दैट वे आपका कंसर्न लोअर इंटरेस्ट रेट है वी कैन स्ट्रक्चर इट इन दैट वे काफी लोग कॉल करते हैं मुझे इंटरेस्ट ओनली पेमेंट चाहिए कुछ टाइम तक वी कैन स्ट्रक्चर इट दैट वे द बेस्ट ऑफ पार्ट इज वी कैन कस्टमाइज इन अ वे यू वॉन्ट द लोन
0: Okay, and I have another final question for you today. I've heard that SBI is starting 2 new loan programs to help business owners. Can you please tell our listeners what these new programs are and how can they help business owners seeking capital?
1: Thanks for bringing this up. This is a totally different topic. So yes, SBI did start 2 new programs on May 1st and these 2 new programs are, I'll quickly recap those. फर्स्ट प्रोग्राम इज मेड इन अमेरिका लोन प्रोग्राम तो हमारे लिसनर में से अगर कोई बिजनेस ओनर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस में है तो आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हो अप टू $1 million दिस इज फॉर एक्सपेंशन ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस दूसरा लोन प्रोग्राम है SBA ग्रोसरी गारंटी लोन प्रोग्राम ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए जो ग्रोसरी रिलेटेड बिजनेस में फूड इम्पोर्टर्स है या फूड सप्लायर्स है फूड रिटेलर्स है लॉजिस्टिक्स है जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं फार्मिंग है फिशिंग है बुचर शॉप्स है अगर आप फूड रिलेटेड बिजनेस में हो यू कैन बी एलिजिबल फॉर अप टू $1 million टर्म लोन टू ग्रो योर बिजनेस
0: ओह ओके दैट्स अमेजिंग तो आप लोग आपको कैसे संपर्क करें हमारे लिसनर्स
1: कॉल मी ऑन माय डायरेक्ट नंबर 817-786-3338 817-786-3338
0: दैट इज फैंटास्टिक Thank you so much, Shahid ji, for being a part of this show and for telling our listeners such great information.
1: Thanks for having
0: me. All right. And indeed, listeners, there is yet another surprise for you. Like I mentioned, it's coming after the 5:20 p.m. show. और आपसे बातें होंगी वो भी किसी स्पेशल सेलिब्रिटी से तो कहीं मत जाइए यहीं रहिए साथ साथ चलिए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाने वाली हूँ इस फिल्म में थी जानवी कपूर फिल्म का नाम था रूही सचिन जिगर का म्यूजिक है और हियर इट इज नदियों पार

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
6: Arey relax, sab tumhara hi to hai.
5: Sach? Ya phir court decide karega?
6: Wait, what?
4: Yes, agar proper estate plan nahi hai, तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद एनआरआई वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
8: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
9: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me. It's called being loyal.
9: It's called being predictable.
10: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
9: And what's so special at Neon Cactus?
10: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
9: Not bad.
10: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
12: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
4: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
13: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता.
4: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स.
13: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
4: देन डोंट ट्राई अलोन. एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट.
14: मे 14th टू मे 17th, अ 3-day इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स. रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. पॉज द नॉइज, meet yourself.

0: And listeners, maine bola tha na ki the surprise element is there today. And I was going to do a show on a hero today. And today, what I got is more than a hero. This guy is a hero. On top of it, he is also a singer. So, and not just aisa waisa singer. Let's just say hi to him first, and then I'll ask you if you can recognize who this is. Hello.
1: Hello, Parul. Kaise hain aap?
0: अरे वाह, क्या बात है. आवाज रियलिटी में जब सुनते हैं तो कुछ अलग ही बात है भाई.
1: आपने सिंगर बोल दिया तो I had to live up to it, right?
0: Oh my God, you got a great voice.
1: Thank you. और by the way, ऐसे आवाज जब आप बात करते, एक सिंगर बात करते हैं तो शायद वो पहचान नहीं पाएंगे. वो हम गाना गाएंगे तो ही पहचान पाएंगे कौन आया है.
0: वो ही मैं कह रही थी, अगर इफ यू कैन सिंग एटलीस्ट गिव आवर लिसनर्स अ लिटिल बिट ऑफ अ क्लू दैट दे कैन रिलेट टू योर वॉइस.
1: एब्सोल्युटली. Like I have a lot of clues that they can relate to, but I think one clue that I can give, जहाँ पे वो relate कर सकते हैं, वो ये है कि

0: क्या है भाई, क्या करें।
1: या
0: तो उसी टाइम पे मैंने 19-20 साल की उम्र में ये डिसीजन लिया कि भाई चलो एक जाते हैं, एक ट्राई मारते हैं, देखते हैं कैसे होता है,
1: कुछ हटके करने,
0: कुछ हटके करना है। और फिर अंदर से जो पुकार एक आता है आपको, तो आपको यू नो आई जस्ट फेल्ट दैट आई शुड टेक दैट रिस्क। तो रिस्क टेकिंग मेरे लिए, दैट्स व्हाट आई लर्नड, टू टेक रिस्क इन लाइफ एंड इट्स ओके टू फेल इज व्हाट आई अंडरस्टूड अंटिल देन एंड आफ्टर दैट इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ कोर्स। बट या आई मीन नोबडी टू बिकम इंडियन आइडल, इंडियन आइडल हैज टॉट मी हाउ टू be brave and take a bold step. If you want to do something from within, give it a thought. Socho usko ek, agar aapko ek soch aata hai andar se, to usko bhav dena chahiye. You have to sit and spend some time on it and go and try and achieve or do what your mind and your heart are asking.
1: So you were able to take that risk despite Absolutely. The pressure, despite the fact that bhai lower middle class hai, job hona chahiye aur padha like kaam karna chahiye, to uske bawajood aapne risk liya, which is something amazing.
0: Absolutely.
1: I would like to ask you, how do you think like should classical music be something that should be pursued by those who are serious about their career to become singers?
0: I would say agar aapko long term kaam karna hai music mein, seekh ke karo jo kar rahe ho. अब अगर सिंगर हो तो आप क्लासिकल म्यूजिक सीख के आओ, वेस्टर्न क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, कर्नाटिक क्लासिकल, कोई भी फॉर्म, एक फॉर्म सीख लो। आपको अगर इम्प्रूव करना है कमर्शियली, आपको अच्छा करना है, जैसे मैंने 4-5 साल कर्नाटिक म्यूजिक सीखा था, फिर मैं बॉम्बे आया इंडियन आइडल के बाद, फिर मैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब से मैंने हिंदुस्तानी 2 साल सीखा था, उसके बाद फिर आई एक्सप्लोर्ड सम वेस्टर्न वोकल टेक्निक्स, बिकॉज जब आप प्लेबैक सिंगिंग करते हो बॉलीवुड में स्पेशली, आपको ना सब चीज़ की सब चीज़ का एक आपको क्या बोलते हैं फ्लेवर रखना पड़ता है, जो जहाँ पे क्लासिकल चाहिए, जहाँ पे वेस्टर्न चाहिए, जहाँ पे आपको वॉइस टेक्सचर आपका काम करता है। तो दीज आर द थिंग्स आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इन। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है, सभी सिंगर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सीख के करना। अगर आप एक कंप्लीट म्यूजिशियन बनना चाहोगे तो यू नो हाउ टू राइट योर लिरिक्स, यू शुड नो हाउ टू राइट योर लिरिक्स ऑल्सो, यू शुड नो हाउ टू प्रोड्यूस योर सॉन्ग्स ऑल्सो, प्रोग्राम योर सॉन्ग्स एंड सिंग। So,
1: so
0: that
1: you,
0: completes
1: as
0: you
1: artist,
0: as a musician.
1: You are saying as an artist, you got to go deeper with your practice.
0: The deeper you go, the longer you live.
1: You will live.
0: In the entertainment industry.
1: Yeah. So definitely your voice is so well trained and groomed. One can feel it. I want to ask you, we're going on a quick break though in 50 okay. seconds. If you can tell me how Western has also helped you in grooming your voice.
0: So basically, Carnatic... या हिंदुस्तानी में आपको हिंदुस्तानी देर इज टेक्निक, जैसे मेरे गुरुजी जो हैं गुलाम उस्ताद खान साहब या मुर्तजा भाई या कादिर भाई जिनसे मैं सीखा हूँ, वो आपको एक वोकल टेक्निक सिखाते हैं, आपका खर्च कैसे आप कॉल आप आई मीन दे हैव बीन गुरुज ऑफ हरिहरन साहब, सोनू जी, लता जी एंड शान दादा एंड बिग बिगीज ऑफ द इंडस्ट्री। तो आपको ये सिखाते हैं कि आपके वॉइस को आप कंडीशन कैसे कर सकते हो। बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि जब हम 3-3 घंटे के लॉन्ग शोज करते हैं, उसके बाद फिर आपका गला बैठ जाता है। तो ये हमको वेस्टर्न म्यूजिक में सिखाया जाता है कि आप टेक्निक
1: क्या बात है। अभी हम वापस आएंगे लिसनर्स, डोंट गो एनीवेयर, स्टे राइट।
2: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ 6 वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स। आई एम डॉक्टर शहजाद बातलीवाला। यस, योर आई सर्जन इज देसी। आई एम अ फेलोशिप ट्रेन्ड सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो। My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
4: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
6: I've been researching retirement planning.
7: Oh, really? Where?
6: Google, YouTube, a guy on TikTok.
7: Or you could just talk to WealthTactic.
6: What's the difference?
7: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
8: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
9: Oh, haseena zulfon wale jaane jahan.
10: Zulfen sirf hawa mein nahi, style mein bhi udni chahiye. Bollywood style layers ho, soft curls ho, ya complete hair makeover. Ambreen Salon gives you that perfect hairstyle, jo aapki personality ko kare highlight. Because great hair doesn't just change your look, it changes your confidence. Mention Funasia and get 10% off on your hairstyle service. Call Ambreen at 214-909-6601.
8: Or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
10: Ambreen Salon. Style that moves with you.
8: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
11: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: And listeners, मैंने बोला था ना कि कितना बड़ा huge surprise है और वो भी Indian Idol season 5 के winner हमारे ही स्टूडियो में फनीशा के स्टूडियो में आपके साथ बातें कर रहे हैं तो like we'll continue the chat Ram now tell me Shriram what were you telling about the western singing
1: yes तो मैं ये बोल रहा था आपको कि western singing में जो मुझे सीखने मिला वो ये है कि आप वोकल टेक्निक्स कैसे सीख सकते हो आप अगर ज़्यादा तीन तीन चार चार घंटे भी गा रहे हो तो आपका वोकल फटीग कैसे ना आए ये टेक्निक्स वो सिखाते हैं आपको
0: आई सी
1: और फिर बिफोर आफ्टर जो वार्म अप्स एंड कूल डाउन होते हैं उससे क्या होता है कि आप इतना लंबा शो करके फिर यू डोंट आपका गला बैठता नहीं है दिस इज द टेक्निक दैट आई लर्न एंड विच इज अमेजिंग इन वेस्टर्न वोकल्स
0: Thank you so much for sharing yeah. that. I'm sure those who are really interested, they can do their homework.
1: Absolutely.
0: And with that, I'd like to ask you, out of all the songs that you've sung, which one feels closest to your heart?
1: Yeah, it's like, if we have two eyes, which is your favorite?
0: Ooh.
1: So it's like that, har gana jab gaate ho na, aapka dil, aapka soul, sab, you know, aap bahut mehnat jaata hai usme. So I love all the songs. That I have recorded in Bollywood, Tollywood, 9 different languages. जितने भी 300-400 गाने
0: हैं। अच्छा 9 different languages में गाए आपने?
1: Yeah, yeah, 9 अलग-अलग languages में मैंने गाने गाए हैं। But yeah, it's like you put in your heart and soul. जो लोगों को पसंद आता है, वो अलग होता है। तो वो आपको कैसे receive करते हैं, वो उनके ऊपर होता है। So ये question आपको audience को पूछना चाहिए।
0: I'm sure they will have their different favorites.
1: अपने radio listeners को पूछने चाहिए।
0: I'm sure. I will. And I will ask them. I will definitely ask them. एक बात बताइए मुझे what's the one struggle behind this glamorous life of you know singing being this Indian idol that you have become and all these years of glam what do you have to say like can you tell us a little bit about you the playback singer that you are what is that like
1: so playback singer is just an acquired taste I would say जैसे मैं बड़ा हुआ था उस टाइम पे ये चल रहा था कि भाई प्लेबैक सिंगर बनना है प्लेबैक सिंगर बनना है बट नाउ इट इज अ वाइडर प्लेटफॉर्म एंड अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स आर कमिंग अप राइट नाउ इट इज जस्ट अ म्यूजिशियन और एन आर्टिस्ट आई लव द चेंज दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू राइट नाउ बिकॉज होल वो जो दौर था एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का एक टाइम पे सोनू जी और शान दादा करते थे गाने के एंड ऑल दीज पीपल वो दौर अभी वापस आया है एंड इट्स नॉट जस्ट प्लेबैक सिंगिंग बट इट इज अ चैलेंज दैट यू गिव योर सेल्फ That you live up to, अगर सक्सेस मिला है तो अगला जो भी आप काम कर रहे हो वो उसी लेवल पे होना चाहिए उससे ऊपर होना चाहिए दैट इज अ चैलेंज आई कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ एंड आई लव दिस होल शिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक दैट इज हैपनिंग विच आई एम ऑल्सो डूइंग अ लॉट नाउ हिंदी पंजाबी तेलुगु इंडिपेंडेंट म्यूजिक मैं ऑलरेडी दो तीन गाने रिलीज कर चुका हूँ एंड आई एम वॉकिंग ऑन दैट पाथ या
0: Actually, you know, really, India is seeing a huge change, like even in films. So I can only imagine that even the music scene is changing.
1: Absolutely.
0: And when you perform, as a performer, I'd like to ask you, when you perform, what's more important to you, perfection or emotion?
1: It's emotion ke saath perfection is what is more important. You need to know where to be. I mean, you need to know the audience pulse, basically. Main ek show flow banata hun. खास करके लाइव की बात कर रहा हूँ लाइव शोज की बात कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंग टू हाउ द ऑडियंस इज रिएक्टिंग आई कीप जंपलिंग माय थोड़ा ऊपर नीचे करते रहता हूँ शो फ्लो बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप देम एंटरटेन्ड एंड द कोर इज दैट दे नीड टू लव यू दे नीड टू नो यू दैट आई एम लिसनिंग टू दिस गाय दैट्स व्हेन दे एंजॉय द शो मोर एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई प्रिफर डूइंग अ लॉट मोर शोज वेयर द ऑडियंस नोज यू दीज आर शोज लाइक टिकेटेड शोज और कॉर्पोरेट शोज जहाँ पे वो चाह के आपको बुलाते हैं जैसे मैं डैलस आया हूँ तो डैलस जितने भी लोग हैं वो जानते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए परफॉर्म करूँ तब ना उनका अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है आप पे वरना क्या होता है आप कोई रैंडम शादी में गा रहे हो सब अपना दारू पी रहे हैं अपना खाना खा रहे हैं आप गा रहे हो आई डोंट लाइक दैट आई लाइक टू कीप अ कनेक्ट विद माई listener who's listening to me so I like these kind of shows where people are more involved they want you there you know it makes you feel as an artist also ek self respect hoti hai ek artist ka
0: aur hunar ka qadr hoti hai you know kyunki aapne itni mehnat kari hai aur jo aap gaate hain koi aap background singing nahi kar rahe hain aap ga rahe hain for an audience and you want that engagement with the audience
1: yeah and I feel an artist is a very emotional person dil se zyada sochta hai dimag se kam sochta hai
0: are you
1: yeah absolutely
0: very emotional
1: absolutely
0: what's your sign
1: I'm a Capricorn.
0: I'm
1: a number one. I'm a Jan 19 born. Number one on my date. Number one on my month. I'm number one. That I like being number one.
0: Yeah, so number one. They are leaders.
1: Yeah, and this is our year. So no wonder I'm in Dallas. So I'm just...
0: You're in the right place. And I feel the people here are very, very welcoming. And they definitely believe in hospitality.
1: Yeah.
0: Let me ask you, are you excited about tomorrow night? Like, what's your message for the fans that you're going to be meeting tomorrow?
1: Absolutely, I'm very, very excited because after Indian Idol, I've not traveled too much to Dallas. I've done a couple of shows before. But this time, I'm very excited to see them because kafi time ho gaya hai. And I'm really excited to see them at Sambuka on the May 15th. Jahan pe hum sab milenge, masti karenge. A lot of surprises in place for you guys. So, yeah, you're going to see a very different and a fully bloomed Shri Ramchandra. For people who have voted for me and supported me during Indian Idol 2010, I'm a very different version to what I was there. But I am a better version of that, I would say. Jo gana bhi gaata hai, jo hosting bhi karta hai, jo acting bhi karta hai, jo dancing bhi karta hai. So, I think I feel this is the right time.
0: You're
1: for myself.
0: Master of many, I would say.
1: Yeah. Yeah, I think rightly said.
0: Yeah.
1: But yeah, I would just promise that they're going to see a different version of me and they're going to meet a different version of me tomorrow.
0: I want to ask you, what are your upcoming projects, Sriram, that your fans would like to know? I want to know, kya kar rahe hai next?
1: Absolutely. So I've been building a lot of my own music, mm-hmm. independent music.
0: Okay.
1: In Hindi, Telugu and Punjabi. One just released in Jan, that was my last release, which is called Dil De Ranjhe, which was a Punjabi song. And usse pehle ek Hindi gana release kiya tha. Abhi, I want to do these three languages of independent music and give my audience more, give my lovers and admirers more to listen of me every year. So I'm working on that, creating an album.
0: So Dil De Ranjha thoda sa gaake sunaiye.
1: Absolutely.

0: आपको सुनना चाहिए. इट इज ऑन रिपल इफेक्ट, रिपल म्यूजिक ऑन यूट्यूब. श्री राम चंद्रा दिल दे रांझी आप टाइप करना, एंड इट्स ऑन ऑल दी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स एज वेल. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग,
1: बड़े जैसे कहते हैं प्रोड्यूस्ड बाय सुनाली.
0: एब्सोल्युटली
1: ऐसी फीलिंग आई इसको गा.
0: एब्सोल्युटली, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड एंड सपोर्टेड बाय सोनाली सिंह, हु इज आवर वेरी फेवरेट, जो दिलजीत के साथ, दिलजीत पाजी के साथ काम कर रहे हैं काफी टाइम से. उनका खुद का एक प्रोडक्शन उन्होंने शुरू किया है और उन्होंने प्रोड्यूस किया गाना ये.
1: और आपकी इसमें जो प्रोनंसिएशन है पंजाबी की इतनी सॉलिड है, आई एम श्योर यू हैव टेकन ट्रेनिंग देयर आल्सो.
0: एब्सोल्युटली, आई लव पंजाबी एंड आई लव पंजाबी म्यूजिक एंड आई हैव
1: बीन सिंगिंग पंजाबी. किदा श्रीराम जी तुसी किदा तुसी डालो से ओए भले भले. सो या डेफिनेटली आप एक और लैंग्वेज रह गई है. वैसे तो आपने 9 में गाया है, लेकिन एट वन पॉइंट एकदम अभी नहीं बट थोड़ी देर में आप डेफिनेटली तेलुगु में भी गाइएगा.
0: एब्सोल्युटली,
1: क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ तेलुगु फैंस ओवर हियर व्हिच दे वुड लव.
0: दैट इज माय लैंग्वेज, मदर टंग,
1: एंड दैट इज योर मदर टंग. एग्जैक्टली,
0: आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन हैदराबाद. सो
1: या
0: या. Sure.
1: So with that, just tell us a little bit about tomorrow night. Are you excited about it? And what can fans expect from you tomorrow?
0: Nothing. Like I said, a different version of me. I'm really looking forward to meet all my fans and definitely people who do not know me also. A lot of people, like I was on Jhalak last year. Kafi logo pata chala ki main dance bhi karta hoon. And then acting in a few Telugu films now. And people know me as a singer. So they're going to meet a different version of me, and I'm really looking forward to meet them, see them, and have lots of fun with them.
1: So now I know that your fans here in Dallas, they know you through Indian Idol, they know you through that stuff they've seen on TV. Huh. But is there something that they don't know which you'd like to share with them? Something which is very personal to you, but you don't mind sharing it with the audience that they don't know about? कुछ आपके बारे में ऐसी बात जो अरे अच्छा वो ये करते हैं मुझे नहीं पता था.
0: वो कल देखेंगे तो उनको पता चलेगा.
1: अच्छा कल
0: तो वो आएंगे तो उनको एक सरप्राइज बहुत ही ये मिलने वाला है कि भाई ये तो वही बंदा है क्या जो हम जिनको हमने वोट किया था जिसको वही बंदा है ये. ऐसे ऐसे तो सबके दिमाग में होगा, सबके
1: बोलूंगी. लेकिन इंडियन आइडल का जब आपको मिला और आपका जो एक्सप्रेशन था, इट वॉज जस्ट सो प्योर. यू वर जस्ट विदाउट एनी प्रिटेंस, यू वर जस्ट जेन्युइनली लाइक इन ऑ. एंड उसके बाद मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन जी ने आपके लिए कहा कि चलिए आप बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ. आई मीन व्हाट एन ऑनर.
0: एब्सोल्युटली, इट्स बीन माय ऑनर एवर सिंस बच्चन साहब के हाथों से मैंने वो ट्रॉफी आई हैड टेकन. एंड उनके उसके बाद आई हैव मेट हिम अ लॉट. एंड मेरा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट गाना था वो उन्होंने रिलीज किया अपने चैनल पे. एंड कभी कभी मैं वंस इन अ ईयर और समथिंग मैं KBC जाके उनसे मिलता भी हूँ. एंड मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो उनके साथ काम करती है ऑन फ्लोर, फ्लो मैनेजमेंट एंड फ्लो मैनेज करती हैं वो, जो हमारे साथ अभी स्टूडियो में भी है. उनके थ्रू मैं काफी मिला हूँ. जोशीना है
1: अमिताभ बच्चन को. इनका नाम क्या है?
0: इनका नाम जोशीना है.
1: हाय जोशीना.
0: और बहुत क्लोज हैं ये. बच्चन जी फॉलो करते हैं उनको, तो आप देख सकते हो उनका पेज. एंड ही इज वेरी स्वीट. एंड इट्स अ लकी थिंग फॉर मी दैट उनके हाथों से मेरा करियर का शुरुआत हुआ था बॉलीवुड में. एंड काफी मैं मानता हूँ उनको.
1: और जिस तरह उन्होंने बोला आपको, लाइक ही लिटरली टुक यू इन हिज आर्म्स, बिकॉज दैट टाइम वाज दैट मोमेंट. एंड देन योर पेरेंट्स केम, यू हग्ड योर डैड, यू हग्ड योर मॉम. इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड यू वर जेन्युइनली लाइक माय गॉड दिस इज रियली हैपन टू मी. देन ही केम टू यू एंड ही सेड अच्छा मैं हेल्प करता हूँ. उसके बाद नॉट टेक इट ऑन ही सेड. एंड उसके बाद आपको एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी. वेल आई वुड ऑल्सो लाइक टू नाउ आस्क यू इफ यू कुड गिव वन ऑनेस्ट पीस ऑफ एडवाइस टू अस्पायरिंग सिंगर्स हु आर लिसनिंग राइट नाउ, व्हाट वुड इट बी?
0: यार आई वुड से कि जस्ट जैसे मैंने शुरुआत भी इसी बात से की थी कि आप अंदर से एक ना आवाज़ आती है आपको कि एक कॉलिंग आता है कि ये करना चाहिए मुझे. उस चीज़ को इग्नोर मत करना.
1: अच्छा.
0: आपको अगर अंदर से कोई आपका दिल बोल रहा है कि मुझे ये ट्राई करना है तो ट्राई कर लो. कुछ जा नहीं रहा है उसमें. एंड ना थोड़ा सा टाइम दे देना उसको.
1: अच्छा.
0: आई वुड से दैट लिसन टू योर हार्ट एंड यू विल ऑलवेज एंड अप इन द राइट प्लेसेस.
1: दिल की आवाज़ सुनिए.
0: एब्सोल्युटली.
1: सो नाउ कैन वी हैव अ नाइस सॉन्ग बिफोर वी लेट यू गो?
0: एब्सोल्युटली. आप बताइए कौन से.
1: एक तेलुगु सुना दीजिए और फिर एंड में एक छोटा सा हिंदी भी.
0: एब्सोल्युटली. तो मैं गाऊंगा एक तेलुगु गाना जो मुझे मेरा पहला फिल्म फेयर मिला था, जिसका जो गाने के जिस गाने को मैंने गाने के बाद मेरा 2023-2024 वन माय फर्स्ट फिल्म फेयर in the Telugu film industry for this song.
1: Okay.
0: It's called O Rendu Prema Meghalila. And okay. Kafi, ye movie abhi Hindi mein bhi ban rahi hai.
1: Achha.
0: Vaise. It's a remake ho raha hai. Baby is the movie.
1: Baby.
0: The movie's name is Baby.
1: Baby.
0: Okay.

0: क्या बात है, बिल्कुल जादू है आपकी आवाज में। बस अब एक हिंदी गाना भी हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए।
1: हिंदी गाना तो कौन सा गाए? ओके, तो मैंने लास्ट हिंदी गाना अभी चंदू चैंपियन मूवी में गाया था
0: अच्छा
1: प्रीतम सर के लिए,
0: ओके
1: जो क्रिटिकली काफ़ी अक्लेम्ड एंड काफ़ी अवार्ड्स
0: ऑफ कोर्स
1: भी जिस मूवी को मिले थे उसमें गाना है, बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना है, सर फिरा। तो सर फिरा दिल में।

0: Yes. That was amazing. Oh my God. This has been such a treat. जिसे कहते हैं ना अभी तक दिल नहीं भरा लेकिन और भी मजे आएंगे व्हेन द लिसनर्स दे मीट यू टुमारो
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू
0: एंड वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल.

0: 1 minute. Sorry.
1: All right, Sriram, you were saying something? Any last message for your listeners? Because, yeah, we have other people who want to interview you too. तो चक्कर ये हो रहा है कि अभी एक और जगह पे भी आपको इंटरव्यू पे जाना है.
0: हाँ जी, अभी बहुत ही पैक्ड शेड्यूल रखा गया है मेरे लिए. तो आई एम ग्लैड कि पारुल आपके साथ हमने बातचीत की है एंड काफी इम्पोर्टेंट चीजें हमने बात की हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर.
1: आई एम श्योर द लिसनर्स हैव टेकन अ लॉट फ्रॉम दिस इंटरव्यू एंड वी होप टू सी यू. आई विल डेफिनेटली बी देयर.
0: यस, यू शुड बी देयर.
1: या आई कांट मिस सच एन इंपॉर्टेंट इवेंट वेयर यू विल बी देयर. So with that, it has been an honor and a Texas style. Welcome to Texas, Sriram Chandra.
0: Thank you, Parul. I'm here. I'm feeling very welcomed.
1: Awesome.
0: Thank you.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Term restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
9: Home values in Collin and Denton County have gone up significantly, which means appraisals have gone up, which means a lot of homeowners are overpaying right now and don't know it. Bezit reviews your appraisal, builds the case, fights it. Nothing up front. May 15th deadline. Bezit.co.
10: Chicken banana.
11: Chicken banana?
10: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
12: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
15: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
16: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
15: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
17: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
9: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
18: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू. धुआं धुआं, क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
19: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
20: That was voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. FunAsia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Sambuca Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.

लिसनर्स, लाइक मैंने मेंशन किया था कि आज मैं किसी हीरो के बारे में बात करूंगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे स्टूडियो में थे श्री रामचंद्र, द इंडियन सीजन 5 विनर, एंड उनके साथ हमने बातें भी करी और खूब सारी उनसे थोड़ी टिप्स भी ली, हाउ ही इज़ टेकिंग क्लासिकल ट्रेनिंग, कर्नाटिक ट्रेनिंग एज वेल एज वेस्टर्न ट्रेनिंग, एंड हाउ वट ही डज, एंड ही इज़ एन इंडिपेंडेंट सिंगर एज वेल एंड ऑल्सो फॉर बॉलीवुड, एंड ही सिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट. विद दैट लिसनर्स, कुछ आप लोगों को जानकारी मैं दे दूँ, बिकॉज यहाँ रेडियो पे इतनी इंटरेस्टिंग बातें के साथ साथ कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिससे यू कैन रियली रियली बेनिफिट फ्रॉम, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, विच इज़ मालाबार. शाइन ब्राइट विद डायमंड्स फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, डैलस ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, necklaces and more that sparkle for every special moment. From classic solitaires to contemporary styles, their diamond collection blends superior quality with timeless design, perfect for engagements, anniversaries, or just celebrating love. Download the mobile app now for more details. एंड एक बहुत ही प्यारा गाना श्रेया घोषाल की आवाज़ में मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ राइट हियर, कहीं मत जाइए. इसके बाद एक गिव अवे भी आ रहा है फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर.

जी हाँ लिसनर्स, और अभी एक गाने की रिक्वेस्ट आई है हसन की तरफ से, सो आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग दैट सॉन्ग फॉर हसन इन जस्ट अ सेकंड. बिफोर दैट लिसनर्स, लेट मी गिव यू सम इन्फॉर्मेशन.

जी हाँ लसन, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई रेड हॉट चिली पेपर का जो गिव अवे है वो कब आने वाला है. वो डेफिनेटली आने वाला है थोड़ी ही देर में, डोंट वरी. अभी 6:20 का ब्रेक आ रहा है और उसके बाद एक सवाल आप लोगों से एंड देन थोड़ी बहुत बातें. तो चलिए अभी सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा गाना. इमरान हाशमी एंड विद्या बालन थी इस पर्टिकुलर फिल्म में और हंसी बन गए. अभी आपने सुना था लेकिन ये गाना हंसी बन गए हो तुम, लेकिन आई वांट टू स्पेयर अ लिटिल बिट मोर फॉर यू.

0: मोहित सूरी की अमित मिश्रा की आवाज़ में, मोहित सूरी की डायरेक्शन में ये फिल्म थी हंसी बन गए, आपने गाना सुना। और अब बस थोड़ी सी देर में एक और आपसे मैं पहली पूछने वाली हूँ। स्टे राइट हियर, डोंट गो एनीवेयर, एंड आफ्टर अ क्विक ब्रेक यू कैन विन अ गिव अवे फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर। स्टे राइट हियर।
1: रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
2: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
3: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
2: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
5: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
6: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
2: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
6: सच में बिल्कुल घर जैसा।
2: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
7: मामू देखो क्या हो गया।
8: ओ क्या हो गया?
7: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
8: ओए जर्मन का कमाल है,
7: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
8: ओए नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
9: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
12: इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now, serving everyday lunch specials, thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks, freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
14: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
15: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
16: Astrology readings for guidance only and results may vary.
17: Dallas, what if going to a clinic actually felt enjoyable? On May 16th, step into a whole new healthcare experience at Lunoxy Medical, Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. Sip from a custom latte bar. Enjoy nothing bun cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting MedSpa prizes. Visit Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205 in Frisco. Lunoxy Medical. Modern care, warm experience.
18: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening to Radio Fun Asia.

And listeners, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राइट हियर ऑन Fun Asia Radio 104.9 FM. This is your host Paul Bhatia, and now it's time to give you a giveaway from Red Hot Chili Pepper. और giveaway dishes कौन कौन सी है बता दूँ, dry chili chicken या और chili baby corn और Dallas's best butter chicken, RH CP's chicken makhan wala. You can pick up the giveaway from the following locations, which are Richardson, McKinney or Allen. Please note that you cannot pick it up from Frisco. Also, there is another condition. If you have won this giveaway from Red Hot Chili Pepper in the last month, then you do not qualify. You only get to win this once a month. So don't participate in that case, because then in that case, others will also get a chance to win. Aur question ye hai ki main jo gana aapke play karne wali hoon, आपको बताना है कि ये गाना, इट हैज़ मेनी मल्टीपल क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर, कि एक तो ये फिल्म कौन सी है जिससे ये गाना लिया गया है, इस फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है, और इसमें मेल एंड फीमेल सिंगर्स कौन है, दैट इज़ नंबर 3, एंड फाइनली म्यूज़िक किसका है. सो दैट्स सिंपल, इट कैन बी इफ यू नो द फिल्म, इफ़ यू नो द सॉन्ग. And here I'm playing it. Studio ka number hai 972-235-5555.

0: बिल्कुल जनाब आली, बहुत ही क्यूट सा गाना था. और अब एक ब्रेक के बाद आपसे सवाल ये है कि कैसी आपकी हैबिट जो ऐसी जिससे आपने भी फ़ायदा किया और जो आप चाहते हैं कि और लोग भी आपकी बात सुन के फ़ायदे में आएं, ऐसी कोई हैबिट है आपकी दैट यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स. 972-235-5555.
1: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
4: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
7: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
8: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
7: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
9: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
10: Mama, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है.
9: रोज का सेम प्रॉब्लम.
11: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
12: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
13: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
14: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेंशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल.
15: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
8: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
16: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
17: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
16: K2 ड्राइव मतलब?
17: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
16: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
17: 100%
18: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
19: भूख लगी
20: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
21: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
22: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
23: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
22: Kya matlab?
23: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
22: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
23: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
22: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
21: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

ऑलराइट जी, करण औजला तेज छाई गए और विकी कौशल ने भी बहुत ही बढ़िया इसमें लग रहे हैं. और ये डांस जो सिग्नेचर स्टेप्स है ना, दैट वर हुक स्टेप्स एंड एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग इट. इट वाज दोस फायर सॉन्ग्स व्हिच बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर. ऐसे होता है, गाना अच्छा हो, एक्टर अच्छा हो, ऊपर से कोरियोग्राफी अच्छी हो, देन यू आर सो सेट, डोंट यू थिंक लिसनर्स. वेल, अब जाने का वक्त आ रहा है, मेरे बाद आ रही है पारो फॉर यू फॉर योर अमेजिंग एंटरटेनमेंट. So, yes, Paro calling Paro, mujhe hamesha yaad aata hai. We had such a great show together. And she will be here very shortly. With that, I have the next song lined up for you, which is totally fire is the word for that song, because it is taken from a movie which became fire. अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं रणवीर सिंह की, कि उन्होंने एक ट्रिलॉजी है, एक नॉवल है, उन्होंने उसके राइट्स ले लिए हैं, एंड ही माइट बी प्लेइंग शिवा. बट देन द ऑथर सेड नो, नॉट रियली, अभी ऐसी कुछ बात पक्की नहीं हुई है. एंड समवन सेड नो, नॉट एट ऑल. सो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट वी जस्ट विश देम द वेरी वेरी बेस्ट. दैट्स हिम एंड हिज वाइफ दीपिका पादुकोण, हु इज राइट नाउ ऑल्सो प्रेग्नेंट विद द सेकेंड बेबी. तो ये तो थी थोड़ी बहुत बॉलीवुड की न्यूज़, और साथ में ये कि अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को. मार्विन इज आउट टिल नेक्स्ट वीक. आई विल बी कवरिंग फॉर हिम फ्रॉम फॉर मंडे एंड ट्यूसडे. एंड बस मस्ती होने वाली है लिसनर्स, और भी मैं सवाल पूछूंगी आपसे. एंड आई विल बी कवरिंग अ हीरो ऑन मंडे, जैसे कि माधुरी दीक्षित को मैं लेके आई थी मंडे को, ट्यूसडे को मैं लेके आई थी आपके खुद के एक्टर, और थर्ड में मैं लेके आई थी एक और एक्ट्रेस. तो हो गई माधुरी दीक्षित, सलमान खान, कंगना रनौत. एंड टुडे वी हैड द प्लेजर ऑफ इंटरव्यूइंग इंडियन आइडल सीजन 5 विनर. आई एम टॉकिंग अबाउट श्री रामचंद्र, जिनका इंटरव्यू हुआ राइट हियर लाइव फ्रॉम द स्टूडियो. व्हाट एन अमेजिंग टैलेंट, व्हाट एन अमेजिंग वॉइस. ही हैज संग इन 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस. बहुत मजा आया उनको सुन के और उनका इंटरव्यू लेके भी. With that, it's time for me to say bye. Be brave, be safe, keep it real, genuine, and happening with Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host, Parul Bhatia, signing off. Enjoy this next track.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: सब कुछ साफ रख सकते हो
3: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
4: क्योंकि ये कौन बोला
3: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पॉलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
5: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
6: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
7: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
8: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
9: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta